आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड सुन रहे हैं आप 100.1 MHz पर. आपके साथ हूं मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन. जिंदगी के सुनहरे रंगों की बात कर रहे हैं, सूर्य की किरणों की तरह. 5:37 और 51 सेकेंड, मुट्ठी में से रेत की तरह समय धीरे धीरे फिसल रहा है, लेकिन हम भी पूरे के पूरे आपके साथ जुड़े रहेंगे. समय चलता रहेगा, हम भी चलते रहेंगे और गीतों का सिलसिला भी यूं ही चलता रहेगा. जो समय है, जैसा समय है, उसको हंसकर गुजारेंगे और यूं ही गीत गुनगुनाएंगे.

दोस्तों, भोर सुहानी हमें प्रेरित करती है अपने भूल से शिक्षा लेने के लिए। फिर से उम्मीदों को जगाने का एक नया दिन शुरू हो चुका है। बस हमें भी देर नहीं करनी और पूरी शिद्दत से लग जाना है अपने सपनों को साकार करने के लिए। गाते हुए गुनगुन

साथियों, उमंगों से ही जिंदगी मुस्कुराती है, हर नई सुबह उम्मीद जगाती है। जो सपनों को दिल से अपनाते हैं, मंजिल भी उन्हीं के कदमों में आती है।

दोस्तों, भोर सुहानी अपने साथ बहुत सारे सपनों को लेकर आई है, जिसे पूरा करने के लिए हमारे अंदर एक नया जोश हमें खुद से भरना होगा। फिर से नई खुशियों को ढूंढने के लिए तैयार रहिए, खुशियों को थामने के लिए तैयार रहिए। भोर सुहानी से फिलहाल विदा लेती है रूपा। आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों के विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्बनी से द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: FM Rainbow 101.9.
1: Yes, नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 FM Rainbow विद मी आरजे वैष्णवी। और हर साल 26 जून को पूरी दुनिया इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग मनाती है। इस दिन का उद्देश्य है लोगों को ड्रग्स के खतरों के बारे में जागरूक करना और एक स्वस्थ, सुरक्षित और नशा मुक्त समाज का निर्माण करना। दोस्तों, जिंदगी एक अनमोल तोहफा है, लेकिन कभी कभी गलत संगत, क्यूरियोसिटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन के कारण कुछ लोग नशा की तरफ कदम

बढ़ा देते हैं। शुरुआत चाहे मजाक में हो या एक बार ट्राई करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे वही आदत एक गंभीर समस्या बन जाती है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे ड्रग्स क्या है, यूथ क्यों इसके शिकार हो रहे हैं, इसके शारीरिक और मानसिक प्रभाव क्या है, नशा से बचाव और पुनर्वास के उपाय क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। सबसे पहले समझते हैं ड्रग्स क्या होते हैं हमारे आगे आगे कार्यक्रम में। आप सुनते रहिए आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 FM रेनबो विद मी आरजे वैष्णवी।

0: 101.9.
1: Welcome back to Akashavani Hyderabad 101.9 FM Rainbow with me RJ Vaishnavi. Aur aap sun rahe hain Namaste Hello Adab. अब हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग. तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ड्रग्स क्या होते हैं. ड्रग्स ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे दिमाग और शरीर के काम करने के तरीके को प्रभावित करते हैं. कुछ ड्रग्स डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करने के लिए होते हैं और निर्देश पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब इनका गलत उपयोग किया जाता है तब ये जानलेवा भी हो सकता है. आमतौर पर दुरुपयोग के लिए जाने वाले ड्रग्स हेरोइन, कोकेन, कैनबिस या गांजा, सिंथेटिक ड्रग्स, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिंस का मिसयूज़, नशा शौहरत में टेम्पररी एक्साइटमेंट या रिलैक्सेशन दे सकता है, लेकिन धीरे धीरे इंसान उसका आदी हो जाता है. एक बार एडिक्शन हो जाने के बाद उसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो सकता है. आज का युवा देश का भविष्य है, लेकिन कुछ कारण ऐसे हैं जो युवाओं का नशा बहुत बिगड़ा हुआ है. तो या इसके बारे में और भी बात करेंगे हमारे नमस्ते हेलो आदाब शो में. आप सुनते रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 FM रेनबो विद मी आरजे वैष्णवी.

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे

0: देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: FM Rainbow 101.9.
1: Yes, welcome back to Akashavani Hyderabad 101.9 FM Rainbow with me RJ Vaishnavi. Aur hum baat kar rahe the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Isme drugs, bacche, ye sab bahut alag hai. Hame ek parivar ke taur par parents ka role, teachers ka role, society ka role, community support, sab कुछ मान्य रखता है. अभी देखेंगे पेरेंट्स का रोल क्या है. बच्चों से खुलकर बात करने से ही पता चलेगा. उनकी एक्टिविटीज़ पर ध्यान दे, इमोशनल सपोर्ट दे. लाइक टीचर्स का भी रोल होता है अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाना, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना. सोसाइटी का रोल नशा मुक्ति अभियान में सहयोग दिलाना, अवेयरनेस कैंप्स, कम्युनिटी सपोर्ट. जब पूरा समाज मिलकर काम करेगा तभी हम नशा मुक्त भारत का सपना साकार कर सकते हैं. भारत सरकार और विभिन्न संस्थाएं ड्रग अब्यूज़ रोकने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं. अवेयरनेस कैंपेन्स, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, काउंसलिंग सर्विसेज, स्कूल एंड कॉलेज प्रोग्राम्स, एंटी ड्रग इनिशिएटिव्स, इन सब का उद्देश्य है लोगों को सही जानकारी और समय पर सहायता उपलब्ध करना. ड्रग्स आपको कुछ पलों की खुशी दे सकती है लेकिन आपकी पूरी जिंदगी छीन सकती है. अपने सपनों को चुनिएगा, नशा को नहीं. अपनी सेहत को चुनिएगा, एडिक्शन को नहीं. अपने परिवार की मुस्कान को चुनिएगा, बर्बादी को नहीं. ये सबसे मैं लाइक हर एक व्यक्ति को, इट मे बी अ स्टूडेंट, इट मे बी अ सिटीजन, लाइक बड़े बुजुर्ग लोगों को भी यही बोलना चाहती हूँ कि ध्यान रखिएगा. सोसाइटी में हम शामिल हैं और सोसाइटी भी हमारा एक परिवार होता है. तो लाइक कोई भी बंदा कुछ भी कर रहा है तो डोंट से दैट मुझे क्यों, लाइक वाई शुड आई गो फॉर दैट बोल के. नहीं, एवरी वन इज़ आर फैमिली, टेक केयर ऑफ एवरी वन. एंड स्टे ट्यून्ड टू आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 एफएम रेनबो विद मी आरजे वैष्णवी. और आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब.
2: Yahoo, Yahoo, Yahoo, Yahoo.

सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। सो बनाए रहिए आप हमारे साथ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 FM रेनबो विद मी आरजे वैष्णवी।

0: FM Rainbow 101.9.
1: Welcome back to Akashavani Hyderabad 101.9 FM Rainbow with me RJ Vaishnavi. और अब तक आपने सुना है ओ सजना भर का बहार, या हमने बहुत सारी बातें करी हैं बहुत इम्पॉर्टेंट विषय के बारे में, और अब भी कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर के बारे में। या अभी हिस्ट्री में जाए तो 1989 में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर लागू हुई थी। इस कन्वेंशन का उद्देश्य दुनिया भर में टॉर्चर को रोकना और पीड़ितों को न्याय दिलाना है। तब से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार इस दिशा में काम कर रही है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के गरिमा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। किसी भी परिस्थिति में टॉर्चर को सही नहीं तराया जा सकता है। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम मानव अधिकारों का सम्मान करें, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएं और ऐसे समाज का निर्माण करें जहां दया, इंसानियत और न्याय सबसे बड़ा मूल्य हो। आइए इस अवसर पर हम

संकल्प लें कि हम मानव गरिमा की रक्षा करेंगे, पीड़ितों के प्रति संवेदनशील रहेंगे और एक शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण और समावेश समाज के निर्माण में अपना योगदान देंगे। याद रखिए, इंसानियत की असली पहचान दया, सम्मान और न्याय में है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 FM रेनबो विद मी आरजे वैष्णवी। और अब एक ब्यूटीफुल सा गाना आ रहा है, व्हाट गोस अराउंड कम्स अराउंड बाय जस्टिन टिम्बरलेक। स्टे ट्यून्ड।

0: FM Rainbow 101.9.
1: Welcome back to Akashvani Hyderabad 101.9 FM Rainbow with me RJ Vaishnavi aur aap sun rahe hain Namaste Hello Adab. Humne bahut sari important baatein kari hain. Ab chalte hain kuch sweet special day ke bare mein. Aaj hai National Chocolate Pudding Day. आज का दिन खास है, मीठा है और चॉकलेट की खुशबू से भरा हुआ है, क्योंकि आज हम मना रहे हैं नेशनल चॉकलेट पुडिंग डे. जा जब भी चॉकलेट का नाम आता है, बचपन की यादें, सेलिब्रेशंस और खुशियों के हर पल याद आ जाते हैं. और जब चॉकलेट के साथ पुडिंग जुड़ जाए तो बात ही कुछ और हो जाती है. आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम चॉकलेट पुडिंग के इतिहास, उसकी लोकप्रियता, उसके स्वाद, उसके फ़ायदे और कुछ मज़ेदार टूतियों के बारे में भी बात करेंगे. चॉकलेट का जादू. दोस्तों, चॉकलेट दुनिया के सबसे पसंदीदा फूड्स में से एक है. चाहे बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आए हैं या किसी को थैंक यू कहना हो, चॉकलेट हर मौके का और खास बना देती है. चॉकलेट में एक अलग ही जादू है. इसका स्वाद लोगों के चेहरे पर तुरंत मुस्कान ले आती है. इसी चॉकलेट से बना है एक बहुत ही पॉपुलर डेजर्ट, चॉकलेट पुडिंग. पुडिंग की क्रीमी टेक्सचर और चॉकलेट का रिच फ्लेवर इसे हर उम्र के लोगों का फेवरेट बना देता है. चॉकलेट की कहानी, क्या आप जानते हैं कि चॉकलेट की कहानी हजारों साल पुरानी है? या इसके बारे में बात करेंगे. आप सुनते रहिएगा आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 FM रेनबो विद मी आरजे वैष्णवी.

0: 101.9.
1: Welcome back to Akashavani Hyderabad 101.9 FM Rainbow with me RJ Vaishnavi. हम बात कर रहे थे नेशनल चॉकलेट पुडिंग डे के बारे में. क्या आप जानते हैं कि चॉकलेट की कहानी हजारों साल पुरानी है? हाँ, चॉकलेट का मूल स्रोत कोकोआ बीन्स है. प्राचीन माया और एस्टेक सभ्यताओं में कोकोआ को बहुत कीमती माना जाता है. उस समय चॉकलेट को पीने वाले पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाता था. बाद में यूरोप में चॉकलेट पहुंची और धीरे धीरे उसके नए नए रूप विकसित हुए. आज चॉकलेट बार्स, केक्स, कुकीज, पेस्ट्रीज और पुडिंग्स के रूप में पूरी दुनिया में पसंद की जाती है. पुडिंग क्या होती है? या अब सवाल है कि पुडिंग आखिर होती क्या है? पुडिंग एक स्वीट और क्रीमी डेजर्ट होती है जो दूध, शुगर और थिकनिंग एजेंट्स के साथ बनाया जाता है. चॉकलेट पुडिंग में कोकोआ पाउडर या मेल्टेड चॉकलेट मिलाया जाती है जिससे इसका स्वाद और भी बेहतरीन हो जाती है. इस डिज़र्ट की सबसे बड़ी खासियत है कि उसका स्मूथ टेक्स्चर. एक चम्मच पुडिंग में जाना जाता है पिघल सी जाती है और चॉकलेट का रिच स्वाद टूट जाती है. नेशनल चॉकलेट पुडिंग डे क्यों मनाया जाता है? नेशनल चॉकलेट चिप पुडिंग डे के बारे में और भी बहुत सारे बातें करेंगे. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 एफएम रेनबो. अभी आ रहा है बहुत सा मीठा गाना और बताइएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर में कि ये गाना आपको बहुत पसंद है या इस गाने का बहुत सारी मीठी मीठी यादें हैं तो शेयर कीजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर. आप तो जानते ही हैं. आप सुनते रहिएगा मेरे को नमस्ते, हेलो, आदाब, पत्नी आरजे वैष्णवी.

आकाशवाणी हैदराबाद के इस विशेष हिंदी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक सुरक्षित, स्वस्थ और प्रगतिशील समाज का निर्माण तभी संभव है जब हमारी युवा पीढ़ी नशा जैसे गंभीर सामाजिक संकट से दूर रहे। हर वर्ष 26 जून को पूरा विश्व इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग अर्थात नशीली पदार्थों की दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। यह अवसर हमें नशीली पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक होने, उनकी अवैध व्यापार के विरुद्ध एकजुट होने और नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। नशीली पदार्थों का दुरुपयोग व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, उसके परिवार को कठिनाइयों में डालता है और सामाजिक व्यवस्था के लिए भी चुनौती उत्पन्न करता है। इस समस्या से निपटने के लिए पुलिस, प्रशासन, शिक्षा संस्थानों और समाज के सभी वर्गों का सहयोग आवश्यक है। हैदराबाद पुलिस द्वारा ईगल फोर्स के माध्यम से नशीली पदार्थों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिनमें जागरूकता, रोकथाम और कानूनी कार्रवाई पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी संदर्भ में आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे कि हैदराबाद पुलिस किस प्रकार नशामुक्ति के प्रयासों को मजबूत बना रहा है और युवा को सुरक्षित भविष्य की ओर मार्गदर्शित कर रहा है। आज हमारे साथ है हैदराबाद पुलिस की DCP ऑफ लॉ एंड ऑर्डर श्रीमती के शिल्पवल्ली जी, जो इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार और अनुभव साझा करेंगी, और उनसे बातचीत प्रस्तुत कर रही है सीमा कुमारी।

0: तो आइए एक जागरूक, सुरक्षित और नशा मुक्त भारत के संकल्प के साथ सुनते हैं ये विशेष साक्षात्कार।
1: नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस के इस अवसर पर आप सबका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास जो बैठी हैं शिल्पवल्ली जी, जो कि यहाँ की वरिष्ठ पुलिस अधिकारी DCP कानून एवं व्यवस्था हैं। नशा आज विश्व भर में एक गंभीर सामाजिक, स्वास्थ्य एवं कानून व्यवस्था संबंधी चुनौती बन चुका है। इसका प्रभाव न केवल व्यक्ति पर बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति पर भी पड़ता है। नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी और उनके दुरुपयोगों को रोकने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियां यानी लॉ एंड ऑर्डर निरंतर कार्य कर रही है। इस विषय पे शिल्पवल्ली जी हमें यह बताएंगी कि कानून और व्यवस्था की तरफ से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होने के साथ साथ वो कैसे इस दिशा में कार्य कर रही हैं। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्ते सीमा जी।
1: जी, आप हमें बताएंगे कि जो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग डे है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है?
2: सो दिस इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग,
1: जी,
2: सो इट इज टू रिमाइंड अस दैट इट इज नॉट जस्ट अ लॉ एनफोर्समेंट इश्यू बट इट इज अ सीरियस सोशल, हेल्थ एंड डेवलपमेंटल चैलेंज।
1: जी,
2: तो इस अवसर पे ये गवर्नमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज को साथ में काम करने के लिए एक ओकेशन है, जो प्रिवेंशन के लिए और कम्बैटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए और इवन सपोर्टिंग रिहैबिलिटेशन के लिए। सो इट इज़ ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द डेंजर्स ऑफ ड्रग्स एंड टू रीइंफोर्स आवर कलेक्टिव कमिटमेंट।
1: जी, यानी ये जो है एफर्ट्स, ये कलेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी इंडिविजुअल एफर्ट से इसको पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे इस प्रेजेंट टाइम की, जिसमें समाज और विशेषकर जो युवा हैं, वो नशे की समस्या को, उनके नशे की समस्या को आप किस प्रकार देखती हैं?
2: हाँ, डेफिनेटली इट्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम एंड इट इज एन एवर इंक्रीजिंग एंड इवॉल्विंग प्रॉब्लम। तो द यूथ ऑफ टूडेज जनरेशन, दे आर मोर एक्सपोज टू ड्रग्स थ्रू peer networks, social media influence, parties, several online communication platforms, and there is a growing perception also that experimenting with drugs is harmless or more dangerously considering it as fashionable. So it is not just a addiction, it is about because it affects mental health, their academic performance, employment prospects, family relations, and the overall quality of life of a youngster is affected right at the formative ages itself.
1: Ji, jo major factors hain young people towards drug addiction, wo kya kya hain?
2: Yes, as we see, as we try to understand whenever we deal with a case and we observe the youngsters or families, when we interact with them, we see that. So the major factors which lead young people towards drug addiction. So as we interact with some of the users and families when we deal with these cases, it is observed that it starts with curiosity sometimes, then experimentation, peer pressure, sometimes academic related stress also. And then there is this lack of parental supervision and family conflicts. Mostly we see single parent families or families which are going through a lot of issues like divorce or some issues between parents. Those kids are more vulnerable to drug addiction. So the kind of anxiety, depression, all those mental health concerns which youngsters are facing these days. Then another important thing is the desire for social acceptance. Then, of course, the exposure that they are getting through the friends, party culture, social media, all these, and the emotional loneliness despite lot of digital connectivity is one of the major factors also for the youngsters to get into this.
1: जी, बिल्कुल सही बात बताई आपने। जो सोशल मीडिया एक्सपोजर है, जो डिजिटल एक्सपोजर है, वो सबसे बड़ा रीजन है आज के युवाओं का ड्रग एडिक्शन का। अब हम बात करेंगे पुलिस डिपार्टमेंट की, क्योंकि आप लॉ एंड ऑर्डर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं। आप कैसे ड्रग ट्रैफिकिंग और जो सब्सटेंस अब्यूजेज हैं उसको रोकने का काम कर रही हैं?
2: विथ रेस्पेक्ट टू तेलंगाना पुलिस,
1: जी,
2: एंड मोर इन एन एलैबोरेट मैनर इफ आई हैव टू से, एज पर द तेलंगाना गवर्नमेंट, माननीय मुख्यमंत्री जी के एक प्रायोरिटी एरिया है कि ये ड्रग अब्यूज और ड्रग ट्रैफिकिंग को खत्म करने के लिए प्रायोरिटी एरिया है ये। तो इसी डायरेक्शन में वो हमको बहुत सारे डायरेक्शंस दे रहे हैं, इसीलिए ये तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो, जो

0: स्थापित हुए हैं स्टेट वाइड ड्रग ट्रैफिकिंग के बारे में एक्ट करने के लिए, और नाउ इट इज़ कॉल्ड ईगल, इलाइट एक्शन ग्रुप फॉर ड्रग लॉ एनफोर्समेंट. दिस ईगल फोर्स, इट फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग ट्रैफिकर्स, डिसमेंटलिंग सप्लाई चेन्स एंड ऑल्सो मॉनिटरिंग द इमर्जिंग ड्रग ट्रेंड्स. सो येस, वी हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड एट स्टेट लेवल, starting from the government, then at the Telangana police level, then at each of the unit level, like city police, we have HNU organization. And each of the units, all of us are working towards with a comprehensive strategy like enforcement, intelligence development, technology, awareness, community participation, and the most recent one is includes rehabilitation.
1: जी. अगर जैसे कि अभी आपने बात की ईगल फोर्सेस की, तो अगर इनसे संपर्क करना हो किसी कॉमन मैन को, तो वो कौन से मेथड अपना सकता है, कैसे इनके पास जा सकता है?
0: 1908 इज द टिप लाइन नंबर.
1: मैं चाहूंगी आप एक बार फिर से वो नंबर दोहराएं.
0: तो जो भी आप ड्रग अब्यूज जहाँ पर भी देखते हैं
1: जी,
0: और या ड्रग यूजर्स को आप आइडेंटिफाई करते हैं, कुछ भी छोटा या बड़ा इन्फॉर्मेशन आपको पता है, तो तुरंत 1908 नंबर को कॉल कर लीजिए. ये ईगल फोर्स का एक सिंगल इंटीग्रेटेड नंबर है, तो 1908 इज द नंबर थ्रू विच एनी वन कैन पास ऑन द इन्फॉर्मेशन.
1: जी, अब हम ये जानना चाहेंगे शिल्पावली जी कि जो कॉमन मेथड्स हैं जो ड्रग ट्रैफिकर्स के द्वारा यूज किए जाते हैं टू टारगेट यंग पीपल एंड स्टूडेंट्स, वो क्या क्या होते हैं?
0: Drug traffickers understand human psychology very well.
1: जी.
0: So they just don't directly sell the drugs. They often see for vulnerable persons. They often offer free samples initially. Then they use peers, especially trusted peers, as intermediaries. So when I am a student of a 9th or 10th class, my alumni of the school, he approaches me, knowing very well that I have a single parent or I have some issues with academics. They know, right? When they were in the school, they know what we are. So when a senior of my same school approaches me through a WhatsApp group or directly meeting at some cafe or something like that, and he takes us into their ambit of influence. So it's a very trusted peer that they use, that they direct towards the young vulnerable group. Now we also have hostels, pubs, other social gatherings, parties and all. Moreover, they create a perception that drug use is fashionable, and then they exploit the emotional vulnerabilities. They also use social media and encrypted messaging platforms. Somebody is inviting you to have a secret chat. Somebody is inviting you to go beyond the normal conversation. It means that whoever it is, whether it is your regular friend or a senior or some acquaintance, it is always a red flag that youngsters should always remember that it has to be taken to the notice of the parent or the teacher or some other trusted friend.
1: जी, बिल्कुल सही बात है. आप जो legal consequences हैं कि अगर कोई भारत में जो है drug पॉज कर रहा है या फिर कंज्यूम कर रहा है या ट्रैफिक कर रहा है कोई भी नारकोटिक सब्सटेंसेस, तो उसके लिए क्या क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं?
0: सी, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ये सब एनडीपीएस एक्ट में शामिल है.
1: जी.
0: तो एनडीपीएस एक्ट इज द कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन दैट इंडिया हैज. इट इज अ वेरी स्ट्रिंजेंट लॉ. इट इज अ वेरी प्रोसीजरल बेस्ड लॉ वेर इन द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द अक्यूज्ड. जनरली इन आर criminal justice system, burden of proof is on the prosecution.
1: Jee.
0: But in this particular NDPS case, burden of proof is on the accused. They have to prove that they are not involved in whatever allegation they have been booked in. So that way, there are varying terms of imprisonment and fine for various kinds of activities. We have commercial quantity, then small quantity, all these kind of categories, and also the kind of substance that is being used. So depending on the substance, depending upon the quantity, depending upon the nature of involvement in the drug trafficking, there are varied imprisonments extending to life and death as well. So starting from 7 years, 10 years, extending to 10, 20 years, life and death, we have all these imprisonment prescribed. And the most beautiful part is that not just a person who is

0: is directly involved, but whoever is abetting, whoever is assisting, whoever is harboring, knowingly or unknowingly, in the, if they are part of this drug network, they are also punished equally.
1: जी, यानी इसमें जो ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी के पास से मिला, लेकिन जिस लोगों ने इसे रखा है या फिर जो लोग इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर सिर्फ ट्रैफिकिंग ही नहीं, जो लोग इसको मतलब छुपाने की भी कोशिश कर रहे हैं, दे ऑल आर पनिस्ड। जी, जब हम बात करते हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की, इनको कंट्रोल करने के लिए, मतलब जो इलीगल ड्रग ट्रेड होते हैं, उस समय आप लोगों को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं?
0: So, with a growing technology,
1: जी
0: not only police are improving their investigation, intelligence skills, but the drug traffickers are also increasingly becoming sophisticated. So, that is a challenge to catch up with them because we just don't have a local isolated issue. It is an interstate, in fact, international trafficking network. We are dealing with wide networks, deep networks. We are dealing with encrypted communication platforms where all these people generally communicate. And they don't use the normal distribution patterns. They use social media, they use dark net, they use trusted suppliers or peddlers, anonymous digital transactions. All these, in fact, increasing synthetic and designer drugs is also an issue. So these are all evolving trafficking methods, which are like once the police chase or cut through one network or one type of supply, another is evolving using newer methods, newer technology.
1: जी, अब हम बात करेंगे, किसी एक का ये दायित्व नहीं है, दिस इज नॉट वंस रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कर्व इट। तो जब हम इसको रोकने की बात करते हैं, तो पुलिस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और फैमिलीज कैसे ड्रग अब्यूज को प्रिवेंट करवा सकते हैं?
0: So as we started saying that this is not just a law enforcement issue,
1: जी
0: it is
1: बिल्कुल,
0: a collective responsibility. So starting from family, neighborhood, community, educational institutions, media, police, judiciary, administration, everyone comes under this orbit. So it's a collective effort that has to be put in. Effort, it is mostly perceived or the responsibility is taken by the police. Having the powers to enforce the law, we generally lead the initiatives. But definitely, it is not a one-side journey. It has to be accompanied. This road towards the fight against drug abuse has to be done together, where families, they have to understand their responsibility while raising the kids. They have to be there to support them emotionally. They should understand what is going on in the lives of their children. They should also be available to them when they need. The problem today is with both parents working and with the nuclear families, we don't have the support system which the children need. So that is why probably they are seeking for temporary respite from outside sources.
1: जी, यानी वैलिडेशन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। जी
0: सपोर्ट के लिए भी.
1: बिल्कुल
0: हाँ,
1: बिल्कुल,
0: तो फिर आते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के रोल. सो व्हेन वी कम टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, दिस इज द प्लेस वेयर स्टूडेंट्स स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम.
1: यस,
0: दिस इज द प्लेस वेयर दे गेट इन्फ्लुएंस्ड मोर आल्सो ड्यूरिंग देयर फॉर्मेटिव ईयर्स. सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को पुलिस के साथ मिलके अवेयरनेस प्रोग्राम्स करना है. और इसके सिवा इम्पॉर्टेंट ये है कि टीचर्स को अर्ली वार्निंग साइंस को रिकॉग्नाइज करने में ट्रेनिंग होनी चाहिए और काउंसलिंग सपोर्ट सिस्टम्स स्कूल्स को रखना चाहिए और जो स्पोर्ट्स आर्ट्स और ऐसे क्रिएटिव एक्टिविटीज़ है इसको भी मार्क्स की तरह कॉम्पिटिटिवनेस इसमें भी नहीं होनी चाहिए. ये
1: जी
0: स्पोर्ट्स क्रिएटिव आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ दे शुड बी व्यूड एज ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ बट दे शुड नॉट अगेन बर्डन द स्टूडेंट्स विथ अचीवमेंट इन दो स्पोर्ट्स और आर्ट्स. लाइक ओनली वेन यू गिव अ स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट और यू विन सम प्राइज और इन अ आर्टिस्टिक एक्टिविटी ओनली वेन यू अचीव सम नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन देर इज नो बेंच मार्क फॉर दैट. समबडी अचीव्स इट्स गुड बट वी शुड नॉट स्ट्रेस दिस चिल्ड्रन अपॉन देम.
1: जी
0: नाउ अपार्ट फ्रॉम मार्क्स दीज अगेन शुड नॉट बी एडिंग टू द बर्डन. दे शुड इन फैक्ट ईज इन स्ट्रेस देम लेस एंड हेल्प देम इन बेटर मार्क्स बट इट शुड नॉट बी एन एडिशनल बर्डन.
1: जी
0: And most importantly, there should be a safe reporting mechanism, whether it
1: जी
0: is by teachers or students. Whenever they notice any such activity related to drug abuse, there has to be a safe reporting mechanism.
1: जी, अभी आप जैसे कि बात कर रही थी कि सेफ रिपोर्टिंग मेकानिज्म, तो हम ये भी

0: कीमती वक्त में से वक्त निकालकर हमारे स्टूडियो में आकाशवाणी हैदराबाद को दिया।
1: थैंक यू सो मच
0: जी। आइए हम सभी यह संकल्प लें कि स्वयं नशे से दूर रहेंगे और अपने परिवार, मित्रों तथा समाज को भी इसके प्रति जागरूक करेंगे। नशा मुक्त समाज के निर्माण हम सभी का साझा जिम्मेदारी है और यही विकसित भारत को की जो परिकल्पना है, जो संकल्पना है, उसको मूर्तित और पूरित भी करता है। धन्यवाद
2: दोस्तों। आप सुन रहे थे इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के अवसर पर प्रस्तुत एक विशेष हिंदी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हैदराबाद पुलिस की DCP इन लॉ एंड ऑर्डर श्रीमती के शिल्पवल्ली जी ने नशीली पदार्थों के दुष्प्रभावों, उनकी अवैध तस्करी के खतरों और उनके विरुद्ध हैदराबाद पुलिस द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर विस्तार से चर्चा की। उनसे बातचीत प्रस्तुत कर रही थी सीमा कुमारी। मित्रों, नशा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि अनेक नई समस्याओं का आरंभ है। इसीलिए आवश्यक है कि हम स्वयं जागरूक बने, अपने परिवार और समाज को जागरूक करें और युवा को सकारात्मक और स्वस्थ जीवन की ओर प्रेरित करें। पुलिस और प्रशासन अपने स्तर पर निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नशा मुक्त समाज का सपना तभी साकार होगा जब हम सब मिलकर इसी अभियान में भागीदार बने। याद रखिए, यदि आपको नशीली पदार्थों के उपयोग, बिक्री या अवैध तस्करी से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त हो तो हैदराबाद पुलिस के ईगल फोर्स नंबर 1908 पर संपर्क कर सकते हैं, जहां आपकी सूचना को गोपनीय रखते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाती है। आइए इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हम सब मिलकर एक संकल्प लें, नशा से दूर रहेंगे, दूसरों को भी जागरूक करेंगे, स्वस्थ, सुरक्षित और सशक्त समाज के निर्माण में अपना योगदान देंगे। इसी संदेश के साथ आज का ये विशेष हिंदी कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तब तक के लिए जयदीप का स्नेह भरा नमस्कार।
3: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026 జూన్ 25 నుంచి జూలై 24 వరకు గణన దశ. ఈ దశలో బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ ఇంటింటికి వచ్చి ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ ని ఇస్తారు. ఓటర్ల ఆ ఫామ్ ని పూర్తి చేసి తిరిగి సంబంధిత బిఎల్ఓకు అందజేయాలి. ఆన్లైన్ లో ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ సబ్మిట్ చేయాలనుకునే వారు voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ లో నమోదు చేసుకోవచ్చు. గుర్తుంచుకోండి, ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ పూర్తి చేసి తిరిగి ఇచ్చిన వారి పేర్లు మాత్రమే ముసాయిదా జాబితాలో చేర్చబడతాయి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి తెలంగాణ.
4: ఇరానీ చాయ్,
5: బన్ మస్కా,
4: హైదరాబాదీ బిర్యానీ,
5: టంగ్ ది కబాబ్,
4: కుర్బానీ కా మీఠా,
5: షహదూద్ మలై,
4: హైదరాబాద్ ఇస్ అ గ్రాండ్ బఫే
5: అండ్ ఎవ్రీ డిష్ హ్యాస్ అ స్టోరీ వెయిటింగ్ టు బి టోల్డ్.
4: ఎగ్జాక్ట్లీ, దట్స్ వై జష్నే హైదరాబాద్ ఇస్ యువర్ ఆఫ్టర్నూన్ ట్రీట్
5: ఫ్రమ్ 2 to 3 PM ఎవ్రీ డే ఆన్ FM రెయిన్బో 101.9.
4: It's not just food.
5: It's culture, history and flavor rolled into one.
4: Jashne Hyderabad.

है टीनेजर को उस ड्रग के अब्यूज से बाहर निकालने के लिए। जी थैंक यू मैम। और अब हम बात कर रहे थे चॉकलेट पुडिंग डे के बारे में, और तो दोस्तों नेशनल चॉकलेट पुडिंग डे के इस खास अवसर पर हम यही कहेंगे कि खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और ज़िंदगी के छोटे छोटे मीठे फलों का आनंद लीजिए। कभी कभी एक बाउल चॉकलेट पुडिंग भी हमें याद दिलाता है कि ज़िंदगी में खुशियों ढूंढने के लिए बहुत बड़ी वजह की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ एक छोटी बाउल ऑफ चॉकलेट पुडिंग पर जाती है। एक मीठा स्वाद, एक प्यारी याद और अपनों का साथ ही काफ़ी होता है। इसी खूबसूरत संदेश के साथ अब हम चॉकलेट पुडिंग डे को एंड कर देंगे और आगे की बहुत सारे डेज के बारे में बात करेंगे। सुनते रहिए आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 FM रेनबो विद मी आरजे वैष्णवी। और अब आएगा न्यूज़।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: మాటైనా
4: పాటైనా
5: ఏదో ఏదో ఉంది గుండెలో తొల్లు, ఏది అర్థం కాదు పైకి చేతల్లు,
3: ఏ చోటైనా
6: సాత్ మే లవ్లీ నిగమ్। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नीदरलैंड्स के महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स के महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर कार्ल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम 2026 में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। अमरीका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश मंत्री जेकब हलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S. कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में

0: आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक हुई। गृह मंत्रालय ने बताया कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो NCB द्वारा आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हो रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थ के खिलाफ लड़ाई में लगे लोगों के प्रयासों की सराहना की है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारत ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग के वैश्विक चुनौती के खिलाफ सबसे मजबूत लड़ाई लड़ी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों के गिरोहों को खत्म कर दिया गया है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक LPG उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू LPG की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं।
1: LPG की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक LPG की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली LPG आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने PNG कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. UP police has arrested 8 people named in the first FIR filed in the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra donation case. The FIR was filed following recommendations made by the Special Investigation Team, SIT, constituted on the directions of Chief Minister Yogi Adityanath. The case was registered at the Sri Ram Janmabhoomi Police Station on the written complaint of Trust member Krishna Mohan. The FIR names Avinash Shukla, Anukalp Mishra, Lavkush Mishra, Manish Kumar Yadav, Karunesh Pandey, Ramashankar Mishra, Subhash Srivastava, and Sri Ram Shankar Yadav alias Tinnu, along with other unidentified accused. The SIT, headed by Lucknow Divisional Commissioner Vijay Vishwas Pant, submitted its preliminary report to the government on Tuesday, making strict recommendations in the matter. Following this, the FIR was registered yesterday. The case came to light after allegations of theft involving offerings and donations received by the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust emerged. India, along with 34 nations, has signed a US-led initiative to build trusted and resilient supply chains to power artificial intelligence AI technologies at the second Pax Silica Summit in Washington yesterday. US Undersecretary of State for Economic Affairs Jacob Hellberg said the joint statement on AI opportunity, under which participating countries aligned behind a pro-growth, pro-innovation regulatory approach for the AI era. Home Minister Amit Shah has lauded the efforts of those who are engaged in the fight against drugs. On the International Day Against Drug Abuse, Mr. Shah said India has waged the strongest battle against the global challenge of drug abuse. In a social media post, he said narco cartels have been ruthlessly dismantled. Prime Minister Narendra Modi will be on a state visit to Seychelles from the 27th to the 29th of this month to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. The Prime Minister last visited Seychelles in 2015. The External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces, along with two Indian Navy ships, will participate in the celebrations. During the visit, the Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Hermine.

0: FM Rainbow 101.9.
1: Yes, welcome back to Akashavani Hyderabad 101.9 FM Rainbow with me RJ Vaishnavi. Aur aap sun rahe hain Namaste, Hello, Adab. अब तक हमने बहुत सारे बातों के बारे में बात किया है. अब बात करेंगे मुहर्रम. आज एक विशेष बात करेंगे मुहर्रम और असुरा के बारे में. यह अवसर एक धार्मिक पर्व की नहीं बल्कि त्याग, साहस, सच्चाई और इंसानियत के मूल्यों का भी याद करने का भी समय है. मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है और इसे बहुत पवित्र माना जाता है. यह नया साल शुरू होने का समय भी होता है, लेकिन मुहर्रम के साथ एक ऐसी ऐतिहासिक घटना जुड़ी है जिसने पूरी दुनिया को न्याय और सच्चाई के लिए खड़े रहने का संदेश दिया है. अभी हम मुहर्रम के महत्व के बारे में जानेंगे. तो इस्लामिक कैलेंडर को हिजरी कैलेंडर कहा जाता है. इसका पहला महीना मुहर्रम होता है. मुहर्रम का अर्थ है पवित्र या सम्मानित. इस महीने को आत्मचिंतन, प्रार्थना और अचल कर्मों के लिए विशेष महत्व दिया जाता है. मुहर्रम के 10वें दिन को असुरा कहा जाता है. असुरा शब्द अरबिक भाषा के शब्द असारा के से आया है, जिसका अर्थ है धस. ये दिन इस्लामिक इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण महीना माना जाता है. आप भी इसके बारे में बहुत कुछ बातें बताइएगा, हम सुनना चाहते हैं. और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 एफएम रेनबो विद मी आरजे वैष्णवी. और एक बहुत ही क्यूट सा गाना आ रहा है, स्टे ट्यून्ड.

0: एक विशेष अतिथि हैं जो कि स्वयं नशे की लत का सामना जिन्होंने किया है, उससे उन्होंने संघर्ष भी किया है और सफलतापूर्वक उससे बाहर निकलकर अपने जीवन को नई दिशा दी है। तो आप दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सीमा जी।
0: सबसे पहले हम आपसे ही शुरू करेंगे। देविका जी, एक मार्गदर्शक के रूप में युवाओं को नशे से दूर रखने में आप अपनी भूमिका को किस प्रकार देखती हैं?
1: सीमा जी, मैं ए प्रोफेशन में मैं 26 इयर्स चालू है, तो इन 26 इयर्स में मैंने बहुत सारे एडिक्ट्स है या पीपल विथ सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स है उनके साथ मैंने काम किया, उनके साथ ही ने फैमिलीज के साथ भी काम किया। इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने सीखा है मेरे जर्नी ऑफ दिस प्रोफेशन में कि लोगों को कंट्रोल करना या क्या नहीं करना क्या करना, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है उनका बात सुनना नॉन जजमेंटल एटीट्यूड से। वो कमी थी ए सफरिंग ए जर्नी ऑफ डिसीज में बहुत सारे लोग सफर होने का मुख्य कारण है कि वो लोगों का बात उनके में क्या चल रहा है, क्यों ऐसा हो गया, उनके सुनने में लोग पीपल वर नॉट लिसनिंग टू देम और देर वॉज लॉट ऑफ कम्युनिकेशन गैप्स है विद द फैमिली मेम्बर्स और विद द पीपल इन अ कम्युनिटी। दैट इज वेयर दिस डिसीज हैज इंक्रीज और रादर प्रोग्रेस्ड इन अ मच मोर सीवियर। सो वॉट आई हैव लर्नड एज अ मेंटर इज पहले ये लोगों को विदाउट जजिंग देम नॉन जजमेंटल एटीट्यूड नॉन पिनिटिव एटीट्यूड से देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दैट इज वॉट अ क्वालिटी मेरे अंदर थी, दैट इज वेयर आई हैव सर्वाइव्ड इन दिस प्रोफेशन फॉर 26 इयर्स। अनदर थिंग इज लॉट ऑफ पीपल डू कम बिकॉज दे लैक सर्टन स्किल्स। सो एज अ मेंटर वॉट वी आर फोकसिंग ऑन इज हर एक का यू नो यू कैन नॉट इट हैज टू बी टेलर मेड। सबका प्रॉब्लम एक ही है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, पर हर एक का कारण अलग अलग होता है, तो यू हैव टू गो टू दैट लेवल ऑफ रूट कॉजेस। बहुत सारे चीज़ हम ये देखते हैं कि कोपिंग स्किल्स लैकिंग है, माने लाइफ स्किल्स, जैसे कम्युनिकेट नहीं कर पाना, एसर्टिव नहीं रहना या नेगेटिव इमोशनल स्टेट से वो कैसे कोप अप करना। सो ऑल दीज एस्पेक्ट्स वी विल बी वर्किंग ऑन व्हेन वी आर वर्किंग विद द पेशेंट। देन अनदर थिंग इज ये ट्रीटमेंट ही नहीं है, वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन अ प्रिवेंशन, माने वी आर वर्किंग इन फ्रॉम अ स्कूल लेवल, क्योंकि प्रिवेंशन से ही इसका हमें यू नो पॉसिबल होता है।
0: जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। अब हम आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि आपकी अपनी जर्नी ही ऐसी रही है जिसमें आपने नशे की लत जो है वो लगी भी और उससे आप उभरे भी। तो आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि आपको कब महसूस हुआ कि नशा आपके जीवन पर नेगेटिव इफेक्ट्स डाल रहा है?
2: थैंक यू मैम। सो एक्चुअली मेरी जिंदगी में जब मैं देखा चाहे तो मैंने नशा बहुत लेट शुरू किया था। I started when I was 24. मगर मेरे अदर इश्यूज भी थे बचपन से, थोड़ा गेमिंग एडिक्शन था, थोड़ा पोर्नोग्राफी के साइड भी थोड़ा प्रॉब्लम था एंड बट स्लोली दैट वाज कंट्रोल्ड, वो सब हुआ था। एंड मैंने अपने दोस्तों को देखा था नशा करते हुए एंड दारू या दूसरे नशे करते हुए एंड उसके कारण एक घिन आया था कि इससे दूर ही रहना बेहतर है, और मैं बहुत पढ़ता था तो नशा करने से क्या साइड इफेक्ट है, इसीलिए दूर रहता था। और डर भी था कि घर पे सब कोई नहीं करते है, क्यों करना है, उसके कारण बहुत साल दूर था। मगर 24 इयर्स में जब मेरे पहली बार पढ़ाई के लिए दूसरा शहर गया एंड दैट वाज द टाइम मैंने नशा करना शुरू किया एंड नशा का प्रभाव इमिडिएटली मुझे पता चलना लगा, क्योंकि वो मेरे पर्सनल रिलेशनशिप्स को इफेक्ट करना शुरू हो गया, मैं बहुत सारा डिसऑनेस्ट बनना शुरू हो गया फैमिली के साथ एंड स्लोली एक टाइम पे नशा बढ़ते गया और ज़िंदगी में एक मोड आया कि मैं सारा चीज़ खोते आ गया। पहले नौकरी चला गया, उसके बाद पर्सनल रिलेशनशिप्स, मेरे बचपन के जो दोस्त थे, मेरे दो साल से मेरे दोस्त थे, वो भी छोड़ के चले गए एंड नौकरी करने के लायक नहीं था, घर पे भी रिलेशनशिप्स अच्छा नहीं था और फाइनेंशियल डेट में मैं चलना शुरू हो गया और ये सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए एंड फाइनल टिपिंग पॉइंट ये था कि मुझे बहुत सुसाइडल टेंडेंसीज तक मैं चला गया और नशा से दूर भी नहीं रह पाया, इसलिए मैं सुसाइड करने के बहुत सोच रहा था। तो दोस वर मेजर थिंग्स विच रियली मेड मी थिंक एंड एस्पेशली मेरा एक साइकियाट्रिस्ट दोस्त थे जो मेरा हालत देखा था एंड वो अभी मैं आई मीन अ गुड वेट बट दैट टाइम आई वॉज लाइक 25 किलोज अंडर वेट। उसने मेरा हालत देख के, तब तक मैं डिनाइल में था, उसने मेरा हालत देख के बोला था कि बॉस तेरा एडिक्शन सिम्टम्स बहुत दिख रहे हैं, अभी तुम रोक के मदद नहीं लोगे तो तेरा जिंदगी तीन ही तीन मोड ले सकता है, जेल या इंस्टीट्यूशन या मर जाओगे। वो एक वेकअप कॉल था कि कुछ करना है इसके बारे में, तब रिकवरी के मोड पे देखना शुरू किया।
0: बहुत बहुत ही बड़ी बोल सकती हूँ, बहुत ही दुखी जो आपका सफर रहा वो दुख का रहा है। मैं आपके पास आना चाहूंगी देवी।

0: राधिका जी, आपके अनुभव में, जैसे कि ये खुद भी युवा हैं, इनके नशे की तरफ आकर्षित होने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं?
1: मैं इसको कैटेगराइज करूंगी, जैसे हार्म प्रिवेंशन प्रोग्राम में हम बोलते हैं 3 P's, सबको याद रखना जरूरी है। फर्स्ट इट स्टार्ट्स विद अ प्लेजर, एक क्यूरियोसिटी, वो यंग एज में क्या होता है एडोलेसेंट एज में कि हाँ सब कर रहे हैं, हम क्यों नहीं करेंगे, उसमें क्या आ रहा है, व्हाई पीपल आर डूइंग अगेन एंड अगेन। सो क्यूरियोसिटी, वो प्रेशर हो जाता है, प्लेजर एक चीज़ है, सेकेंड इज अ प्रेशर। सो इट कैन बी एन एकेडमिक प्रेशर, इट कैन बी अ प्रेशर फ्रॉम द पीयर्स। सो ज़्यादातर एडोलेसेंट एज में हम पीयर प्रेशर का, पीयर इन्फ्लुएंस का ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो। द थर्ड पी इज़ अ प्रॉब्लम सिचुएशंस। ऐसा नहीं कि किसी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहते, बट द थिंग इज़ यहाँ पे बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम सिचुएशन दे डोंट नो हाउ टू फेस इट, हाउ टू कोप विथ इट और हाउ टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, दैट इज़ वे दे रिसॉर्ट टू यूजिंग द सब्सटेंसेस। यही नहीं है, बट लॉट ऑफ एकेडमिक प्रेशर, देर इज़ अंडरलाइंग मेंटल हेल्थ इश्यूज ऑल्सो वी सी, लाइक एंगजाइटी, बहुत सारे सेल्फ एस्टीम इश्यूज युवा में हम देखते हैं, बिकॉज ऑफ दैट दे वॉन्टेड ऑलवेज सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड। सो ऑल दीज कैन बी द कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। नॉट ओनली दैट, ये एक्सेसिबिलिटी अवेलेबिलिटी भी अभी बहुत है, एंड मीडिया इन्फ्लुएंस इज हैविंग अ ग्रेटर रोल इन सब्सटेंस यूज अभी यंगस्टर्स में। सो यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस एंड दे डोंट हैव द रियल लाइफ कनेक्शंस आर लैकिंग, एंड लगता है कि बहुत सारे फॉलोअर्स हैं आपको सोशल में, बट यू डोंट हैव अ रियल फ्रेंड। सो दैट काइंड ऑफ लोनलीनेस और बीइंग आइसोलेटेड इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स वी सी इन अ यंगस्टर्स। माने दे कांट ओपन अप देयर हार्ट टू एनीबडी, इवन द फैमिली मेंबर्स, बिकॉज द पेरेंटल लैक ऑफ सुपरविजन ऑल्सो वी आर सीइंग वन ऑफ द प्रोमिनेंट फैक्टर्स। सो यू सी द कलेक्शन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। हाँ, मैं कैटेगराइज करूंगी कि हर एक बच्चे की, यू नो, ह्यूमन बींग का जिंदगी में प्रोटेक्टिव और रिस्क फैक्टर्स रहते हैं। सो रिस्क फैक्टर्स अभी हम ज्यादा देख रहे हैं, एंड दैट इज वेयर आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, जैसे लैक ऑफ डिसिप्लिन हो, लैक ऑफ सुपरविजन हो, एकेडमिक स्ट्रेस और लैक ऑफ कोपिंग स्किल्स हो, बीइंग लोनली, सेल्फ एस्टीम इश्यूज हो, ऑल दीज आर रिसॉर्टिंग देम टू अवॉइड दीज प्रोटेक्टिंग फैक्टर्स एंड गेटिंग इन टू दिस प्रॉब्लम।
0: जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं, क्योंकि अभी तो बात हो गई कि नशा, जो नशे की लत थी, उसकी शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई और कब लगा कि आपको वेकअप कॉल आया है इसके लिए। लेकिन जब आपने नशा छोड़ने की प्रक्रिया शुरू की, तो उसमें क्या क्या चैलेंजेज, क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा?
2: तो एक चीज ऐसा हो गया था कि जैसे आई स्टार्टेड टेकिंग साइकियाट्रिक हेल्प, सो थेरेपी को जा रहा था एंड मेडिकेशन भी दे रहे थे, एंड डॉक्टर ने क्लियरली मुझे बताया था कि इस मेडिकेशन के साथ तुम नशा करोगे तो तेरा ब्रेन के लिए बहुत हानिकारक है, दूसरे ऑर्गन्स के लिए हानिकारक है, तुम मर भी सकते हो। मगर वो डर था कि मैं मर जाऊंगा ये मिक्स करूंगा तो। मगर एक दो दिन ही मैं रुक पाया, वो नशा की जो लत है फिर से मुझे खींच के नशा के वो, सो मैं मेडिकेशंस मिक्स कर रहा था अपने नशे के साथ, एंड दैट टुक मी टू अ वेरी बैड स्पेस मेंटली। एंड एक और चीज़ था कि मेरा सर्कल जो था, मेरा अच्छा खासा जो सर्कल था, जो भी फ्रेंड्स थे, वो सब छोड़ के चले गए। अभी जो सर्कल मैंने बनाया वो ड्रग एडिक्ट्स थे, नहीं तो पेडलर्स थे, नहीं तो वेरी क्रॉनिक अल्कोहलिक्स थे, जो मेरे टाइप ऑफ यूजिंग को वो एंकरेज कर सकते, उनके साथ ही मैं करता था। तो वो सर्कल से बाहर आना और नॉर्मल सोशल ओकेजन्स पे, जहाँ अभी अल्कोहल और ड्रग्स भी बहुत कॉमन हो गया है, उनको मैं जाके ना कैसा बोलूँ, मैं नहीं करूँगा कैसा बोलूँ, या दूसरे हॉबीज़ कैसा ढूँढूँ, या क्या करना है, क्योंकि मैं रोक नहीं पा रहा था। जो भी मेरा एनवायरनमेंट था सपोर्ट करने का, जो सपोर्ट सिस्टम्स मिल रहे थे, उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। तो दीस वर द चैलेंजेस जो दैट आई फेस्ड ड्यूरिंग दैट टाइम।
0: जी, यानी ना कैसे बोलना है, ये सबसे बड़ी चैलेंज थी। मैं आपके पास आना चाहूंगी देविका जी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो नशे का बढ़ता हुआ खतरा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ परिवार ही नहीं, मेरे ख्याल से जो जीवन मूल्य हैं, नैतिक शिक्षा है, या फिर खास करके अगर मैं बात करूं विद्यालय और जो मार्गदर्शकों की भूमिका है, वो बहुत बढ़ जाती है। तो उसको आप कैसे डिफाइन करेंगी?
1: वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम एक ही कोने में, यू नो, एंगल में देख रहे हैं कि बच्चे सफर हो रहे, वहां से शुरुआत हो रही है एडोलेसेंट एज में। आपको, हमें ये, अगर इसको प्रिवेंट करना है या इसके ऊपर ध्यान देना है, तो हमें कोलैबोरेटिव अप्रोच बहुत जरूरी है। इसी के ऊपर ज्यादातर हम अभी फोकस कर रहे हैं, कोलैबोरेटिव अप्रोच। जैसे एनजीओस आर वर्किंग, एनजीओस कब काम करते हैं, प्रिवेंशन प्रोग्राम्स में काम करते हैं, या ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं, सो जो ऑलरेडी सफरिंग पीपल हैं वो आके वहाँ पे मदद लेते हैं। बट अगर यू आर लुकिंग एट अ प्राइमरी प्रिवेंशन लेवल, टीचर, द

0: एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैज अ वाइटल रोल टू प्ले हियर. सो यहाँ पे हम यू नो यू कैन आइडेंटिफाई द अर्ली वार्निंग साइंस. वी से दैट वॉट आर द अर्ली वार्निंग साइंस, इवन द पेरेंट कम्युनिटी, टीचिंग कम्युनिटी एंड द कम्युनिटी लेवल सब साथ में ये समस्या की एड्रेस करेंगे तो हमें एक सोल्यूशन मिल सकता है. सो हियर आई वुड इन्फॉर्म द पेरेंट्स एंड द टीचर्स टू वॉच, बिकॉज 70% 30% द चाइल्ड इज यू नो लिविंग इन दिस टू प्लेसेस. सो वेयर टीचर्स इफ दे सी दैट यू नो एक बच्चा ग्रेड्स ड्रॉप हो रहा है, अनेबल टू यू नो फोकस, अटेंशन नहीं है, देर आर सर्टन बिहेवियर इश्यूज है, देर इज समथिंग हम अर्ली वार्निंग साइंस में हम नोटिस करते. सो द टीचर हैज टू बी एजुकेटेड अबाउट वॉट आर द यू नो थिंग्स, ही इज गेटिंग आइसोलेटेड, नॉट टॉकिंग टू एवरीबडी एंड ग्रेड्स आर ड्रॉपिंग, ऑलवेज फीलिंग स्लीपी, अनहाइजीनिक है, देर शैबिली ड्रेस बिकॉज दे डोंट केयर ऑफ द पर्सनल हाइजीन. इवन पेरेंट्स हैज टू सी दैट यू नो एस्पेशली सर्टन ड्रग्स, यू नो रेड ब्लड शडाइस है, लिसनिंग टू द म्यूजिक ऑल द टाइम इन अ लाउड वॉइस, और शटिंग द डोर, बाहर नहीं आ रहे, सबके साथ आंख नहीं मिला रहे, यू नो एंड दे आर अनेबल टू रजिस्टर द इंफॉर्मेशन. स्कूल में जब बताते तो अटेंशन नहीं रहता है एंड दे के नॉट रिट्रीव द इंफॉर्मेशन. जब आप अ क्वेश्चन पूछते हो तो दे आर कन्फ्यूज. सो ये सब नॉट ओनली दैट इमोशनल डिस्टर्बेंसेज है, मूड स्विंग्स है एंड सीक्रेसी है घर में. यू नो पेरेंट्स कैन नोटिस द मनी इज मिसिंग एंड दे आर टेलिंग लाइज एंड देयर फ्रेंड सर्कल ऑल्सो चेंजेस. सो ऑल दिस एंड ऑलवेज दे प्रिफर टू बी अलोन, और रात में ज्यादा दे आर अवेक एंड दे आर नॉट गेटिंग अप इन द मॉर्निंग. सो ऑल दीज आर द इंडिकेटर्स वेयर यू कैन से दैट समथिंग इज नॉट ओके विथ माई चाइल्ड, वी नीड टू एड्रेस इट. मोस्ट ऑफ द टाइम अभी तक आई वुड से 5 साल के पहले तक ऐसा था कि पेरेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द चाइल्ड, पेरेंट्स फील द स्कूल इज रेस्पॉन्सिबल, सो देर इज नो कम्युनिकेशन. सो वो गैप फिल करना है बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम वी आर लुकिंग एट अ वेरी पॉजिटिव सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम.
1: जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने. यानी यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी सबकी बनती है, सिर्फ मार्गदर्शकों की ही नहीं बनती है. हम आपके पास आना चाहेंगे और बात करेंगे रिहैबिलिटेशन यानी पुनर्वास और काउंसलिंग की. तो इसने आपको कैसे मदद की नशे की मतलब जो लत है उसको छोड़ने में?
2: तो मेरे पहली बार जब मैंने थेरेपी शुरू किया था, फर्स्ट टाइम मैं सोच रहा था कि सिर्फ एडिक्शन ही मेरा प्रॉब्लम है, और थेरेपी के साथ काउंसलिंग जब ले रहा था, द साइकियाट्रिस्ट यू नो डायग्नोज मी विथ पीटीएसडी, यू नो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एंड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, एंड विच आई नेवर थॉट दैट आई हैड. एंड कुछ सारे चीज़ मेरे ज़िंदगी पे बारे में पूछ रहे थे और कुछ कुछ पता चल रहा था. तो मैंने पहली बार देखना शुरू किया कि एडिक्शन एक सर्फेशियल प्रॉब्लम था मेरा, कुछ अंडर बहुत डीप पर्सनैलिटी इश्यूज़ है जो एक्चुअली एडिक्शन के रूप में बाहर आ रहे थे. एंड उस चीज़ को देखने में मुझे साइकियाट्री बहुत हेल्प किया. एंड एक और चीज़ था कि मैं बहुत सुसाइडल बन रहा था क्योंकि मैं रोक नहीं पा रहा था अपने लत को, कैसे बाहर आना नहीं पता चल रहा था. सो उस समय सुसाइड करने से मुझे जो चीज़ मुझे बचाया है, मैं मानता हूँ कि साइकियाट्रिक हेल्प मुझे बचाया था.
1: मेरे ख्याल से मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी. जो भी श्रोता हमारी ये सुन रहे हैं वो इस बात को जरूर नोट करें कि साइकियाट्रिस्ट से मिलना, साइकोलॉजिस्ट से मिलना कोई सोशल टैबू नहीं है, ये पूरी तरीके से मिथ्या है. अगर आप किसी साइकियाट्रिस्ट से मिल के अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं या फिर अपने समाज के किसी ऐसे व्यक्ति की कोई सुरक्षा कर सकते हैं तो ये समाज के कल्याण के लिए ही साबित होगा. जी आप बताएं.
2: Yeah, so psychiatric help and it helped me at that moment to protect me from myself. And उसके बाद I had to take additional help, you know, क्योंकि ये सब support systems रहते हुए भी मैं रोक नहीं पा रहा था कैसे बाहर आना है. तब the other fellowships like Alcoholics Anonymous, Narcotics Anonymous, ये fellowships के बारे में मुझे जानकारी मिला था. साइकियाट्रिस्ट मेरा जो दोस्त था जो ने बताया था, उसने मुझे एक मेंबर से मिलवाया था और वो उसका मदद भी ले रहा था. सो एक्चुअली द इंट्रोडक्शन
1: तो मेरा, आप हमारे श्रोताओं की इसके हेल्पलाइन नंबर भी बताएं.
2: या श्योर, मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस का हेल्पलाइन नंबर बताऊंगा. उसका हेल्पलाइन नंबर है 9666466118, 9666466119. ये टोल फ्री नंबर है एंड 24/7 आपका मदद मिलेगा. एंड दिस इज फ्री हेल्प, कोई भी पेमेंट करने का जरूरत नहीं है. जिसको भी एक इच्छा है दूर रहने का उनके लिए ये मुफ्त.
1: जी बहुत अच्छी बात बताई आपने. मैं आपके पास आना चाहूंगी देविका जी, क्योंकि देखिए अभी हमने बात की कि कैसे मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को मजबूत कैसे लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि जैसे कि खेल हो गया या फिर सांस्कृतिक गतिविधियां हो गई या फिर जो क्रिएटिव वर्क होते हैं वो कैसे युवाओं को नशे से दूर रखने में सहायक होते हैं?

0: हम इसको बताते हैं कि पॉजिटिव एडिक्शंस माने सी हम बचपन से नॉट ओनली एजुकेशन में हमारा सब्जेक्ट्स ही नहीं है बट हम स्पोर्ट्स में या क्रिएटिव आर्ट्स में भी हमारा एक क्लास चलता है। अभी एजुकेशन सिस्टम सीबीएसई ने ये बहुत एम्फसाइज किया है
1: जी
0: कि हर एक को ना अपना एक पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। वो लाइफ स्किल करिकुलम को भी इसने एकेडमिक करिकुलम ने मर्ज किया है। नॉट ओनली दैट अभी एडिक्शन रिलेटेड इश्यूज का अगर ये खाली हम आज सब्सटेंस यूज बता रहे हैं बट देर आर लॉट ऑफ अदर एडिक्शंस ऑल्सो वेयर वी आर सीइंग प्रॉब्लम्स इन यंग चिल्ड्रन राइट नाउ। वो गेमिंग हो सकता है,
1: जी
0: इवन
1: बिल्कुल
0: स्टूडेंट पॉपुलेशन आर इन्वॉल्व इन गैम्बलिंग एडिक्शन। सो ये बहुत सारे जैसे अभी बताए कि पॉन एडिक्शन चल रहा है बच्चों में, बहुत सारा ये देख रहे हैं हम। सो इट इज़ अ बिग चैलेंजिंग फॉर अस एंड एक प्रॉब्लम को आइसोलेट करके हम नहीं देख सकते, इट इज़ गोइंग हैंड इन हैंड। सो पैरेलली ये सब देख रहे हैं एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स वी आर सीइंग इन चिल्ड्रन। सो अगर हम इसको दूर करना है, जैसे आपने बताया कि वी हैव टू लुक इन टू द पॉजिटिव एडिक्शन एंड बचपन से हमें जो आपका पोटेंशियल है, आपका पर्पसफुल लाइफ में क्या पर्पस है आपका, आपका गोल सेटिंग पे ध्यान देना, साथ साथ में नॉट ओनली एकेडमिक गोल्स और द फिनेंशियल गोल्स यू हैव इन लाइफ बट ऑल्सो यू नीड टू हैव समथिंग विच मेक्स योर सोल हैप्पी जॉय। सो दीज आर द थिंग्स माने हॉबी बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट।
1: जी
0: आई विल टेल एवरी स्टूडेंट दैट द हॉबी बिल्डिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब तक हम जियेंगे दिस इज वेर इट मेक्स योर सोल हैप्पी बिकॉज दिस इज प्योरली वी आर डूइंग इट फॉर आवर आवर सेल्व्स, नॉट फॉर मनी और नॉट फॉर आर सर्वाइवल। सो आपका एकेडमिक बाकी अदर गोल्स के साथ में भी अपने आप को जिंदा रखना है, हैप्पी रखना है, तो एक हॉबी बिल्डिंग वी कॉल देम एज पॉजिटिव एडिक्शन। ये स्पोर्ट हो सकता है या म्यूजिक हो सकता है, आर्ट हो सकता है, यू कैन राइट। सो आई थिंक इफ आई हैव रीडिस्कवर्ड माई सेल्फ एवरी वन कैन डू दैट, ऑल ऑफ अस हैव दैट पोटेंशियल विच वी कैन
1: जी
0: यूज।
1: बिल्कुल सही बात है, यानी अपने आप को ऐसी चीजों में भी आप रखें जो आपको खुद को खुश रखता हो और स्वस्थ रखता हो। आप क्योंकि आप खुद ही, आपने देखा होगा आपका परिवार कितना सफर कर रहा है आपके नशे की लत होने की वजह से, तो आप उन लोगों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे जो वर्तमान में नशे की लत से जूझ रहे हैं और उनकी जो पारिवारिक जो सदस्य हैं वो उनके साथ साथ सफर कर रहे हैं?
2: जिन लोगों को नशा का प्रॉब्लम है, मैं ज़रूर बोलूँगा कि दो चीज़ करने के लिए, एक है साइकियाट्रिक एंड रिहैबिलिटेटिव हेल्प लेने का, और दूसरा चीज़ ये है कि ये फेलोशिप्स जो है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस या नारकोटिक्स एनोनिमस, और बहुत सारे फेलोशिप्स है, गैम्बलिंग एनोनिमस भी है और सेक्स एडिक्स एनोनिमस भी है, बहुत सारे ऐसा फेलोशिप्स है
1: अच्छा,
2: जैसे।
1: अगर कोई नशे की लत से जूझ रहा है, अगर उन्हें ये कोई जैसे जो आप साइट्स बता रहे हैं, अगर उन्हें ढूंढना हो तो वो कैसे ढूंढ पाएंगे?
2: सिंपली गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, ये
1: जी
2: बहुत सारा अवेलेबल है गूगल पे,
1: जी
2: या सर्च करेंगे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगा, हेल्पलाइन मिल जाएंगे, और जो भी मीटिंग्स है सिटी में, कहाँ ऑनलाइन भी मीटिंग्स है, ऑफलाइन भी मीटिंग्स है, कहाँ जाके क्या करना है, आपको सारे इन्फॉर्मेशन वो वेबसाइट पे मिल जाएंगे।
1: हमारे श्रोता जो भी ये प्रोग्राम कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो ये नोट करें कि उन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने घर बैठे ही अपने गूगल पे टाइप करके रिहैबिलिटेशन और काउंसलिंग दोनों ही ले सकते हैं और वो भी निःशुल्क। जी हाँ, आप बता रहे थे, तो फिर ऐसे परिवार के सदस्यों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे?
2: परिवार के सदस्यों को, मैंने अपने जो परिवार में देखा था कि बिकॉज ऑफ माई एडिक्शन माई फैमिली गॉट अफेक्टेड, माई फैमिली मेम्बर्स को डिप्रेशन का इश्यू आ रहा था, दे बिकेम वेरी न्यूरोटिक, एंड मुझे ये बताया गया था कि मैं नशा के पीछे भागते रहता हूँ और मेरे फैमिली और सदस्य मेरे पीछे भागते रहते, हम सब गोल गोल घूम रहे। एंड एक चीज़ है कि मैंने अपने अनुभव से सीखा और देखा, नशा का लत लगना एक बहुत सारा रिस्क है, एंड उस रिस्क में एक पार करने के बाद उस एडिक्ट को बचाने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फैमिली सोचते रहता है कि हम बचा सकते हैं, हम ये कुछ भी कर सकते हैं, मगर बिना एनेबल करके उसको अपने एडिक्शन का कॉन्सिक्वेंसेस देखने के लिए कैसे हेल्प करेंगे। और फैमिलीज के लिए भी ऐसा फेलोशिप्स है, एलेनॉन बोल के अल्कोहलिक्स एनॉनमस का एक सिस्टर फेलोशिप है, जो फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑफ सफरिंग एल्कोहलिक्स के जो फैमिली और फ्रेंड्स है उनके लिए एक फेलोशिप भी है। एंड ज़्यादातर मैं बोलता हूँ कि फैमिली काउंसलिंग और ये फेलोशिप्स का भी मदद लेना, और सबसे पहले ये चीज़ अंदर से निकाल देना कि मैं उस एडिक्ट को मदद कर सकता हूँ, क्योंकि सिर्फ हम सहायता दे सकते हैं, वो सहायता लेगा कि नहीं, वो बाहर आएगा नहीं, उनके हाथ में नहीं है, तो वो एक डेल्यूजन से थोड़ा बाहर आने का
1: और
2: कोशिश करना।
1: साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट से मिलने और

0: काउंसलर से मिलने की जरूरत होती है। इंस्टीड ऑफ की सेल्फ हेल्प जो वो उतना कर पाते हैं, किसी अगर एक्सपर्ट के पास ले जाएं तो इसका निदान संभव है। जैसे कि ऐसा माना जाता है, एक मान लीजिए सोशल स्टिग्मा की तरह ही मान लीजिए, कि हर कोई कह देता है कि अगर आप नशा कर रहे हैं तो 100% मुक्ति असंभव है, इम्पॉसिबल है। तो आप अपने आप को अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में क्या अंतर महसूस करते हैं, मतलब आप क्या 100% रिकवर हो पाए हैं? अभी आपका जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ है वो कंपैरेटिवली कितना बेहतर है?
1: कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है मैम, क्योंकि मेरा फिजिकल हेल्थ इम्प्रूव करना शुरू हुआ, क्योंकि अच्छा सा खा पा रहा हूँ, भूख भी लग रहा है और नींद भी कुछ समय लगा है, नींद सोने के लिए वो सब रेगुलराइज होने में थोड़ा समय लगा है। नाउ फिजिकली आई एम रियली गुड, और उसके लिए अभी ज़्यादा एक्सरसाइज या जो भी जिम जाना, ये सब अदर हॉबीज़ भी इनकलकेट करना शुरू किया। और मेंटल एस्पेक्ट के मामले में उसके ऊपर थोड़ा वर्क करते रहना है, क्योंकि जब एडिक्शन बंद कर देते एक कमी फील करते रहते हैं, तो उस कमी को महसूस करने समय क्या करना है, लाइक काउंसलिंग हेल्प मी लुक एट वेयर इज़ दिस कमिंग फ्रॉम, किधर से आ रहा है ये कमी, और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के प्रोग्राम और ये सर्विस एस्पेक्ट जो है वो कमी भी फिलअप कर रहा है। तो आई हैव टू बी रियली केयरफुल, ये नहीं सोचना है कि नशा चला गया, ड्रग चला गया तो मैं ठीक हो गया, वो सिर्फ एक सिम्टम चला गया, मगर मेरे में जो भी है मेरा परिवर्तन वो भी उसका ध्यान करना है। और ये सब मदद लेके सीरियस लाइफ और डेथ के, जैसे हर दिन मेरा एक लाइफ और डेथ का लाइन पे हूँ मैं, ऐसा जीने का कोशिश करना है। और एंड आई एम हैप्पी टुडे, लाइक कंपेयर टू हाउ आई वाज, अभी वो सुसाइडल थॉट्स नहीं है, खुद का काम कर पा रहा हूँ, और मेरे दोस्त जो खो गए वो वापस आ गए। अभी इस प्रोग्राम के जब आ रहा था, मैं अपने बचपन के दोस्त से बात करके आ रहा था, तो ये सब चेंजेस आना शुरू हुआ स्लोली, तो एक अच्छा था।
0: यानी बेहतरी जो है वो आती है, वक्त लगता है। देविका जी, चलते चलते सारे युवाओं को जो भारत को नशा मुक्ति की तरफ लेके जा सकते हैं, उनके लिए क्या संदेश है आप?
2: ये संदेश देने के पहले मैं ऐड करूंगी अभी जो बताए, हर एक को याद रखना है ये बीमारी जो है ये क्रॉनिक है, माने आज आप करो तो दूसरा दिन आप एडिक्ट नहीं बन जाते हो, तो उनका समय लगता है, इसलिए माने देयर इज अ पैटर्न ऑफ यूज एंड इट्स अ ब्रेन डिजीज एंड इट्स अ रिलैप्स प्रोन डिजीज। सो ये क्यों बता रहा है ब्रेन डिजीज, बिकॉज दिस इज इनक्यूरेबल है बट ये ट्रीटेबल है। सो यहाँ पे हमें रिकवरी भी लाइफ लॉन्ग जर्नी है, जैसे सिम्टम्स आपके कम हो जाएंगे पर आपको ध्यान रखना है, अपने प्रोटेक्टिव फैक्टर्स को बढ़ाना है और सस्टेन रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। एंड मैं एक संदेश देती हूँ कि इसका प्रिवेंशन ही बेहतर है, या आप इसके चॉइस इन्फॉर्म्ड चॉइस लेना बहुत ज़रूरी है। सो चूज़ वाइजली, द फर्स्ट पॉइंट आई विल टेल टू एवरी एडोलेसेंट और एवरी स्टूडेंट इज दैट चूज़ वाइजली हु आर द पीपल यू आर चूजिंग, विच काइंड ऑफ एनवायरनमेंट यू वांट टू बी इन, व्हाट काइंड ऑफ सोशल सर्कल। सो दैट इज़ अ पहला आपका चॉइस है। द सेकेंड वन इज एवरी वन ऑफ अस हैव प्रॉब्लम्स, हमारा स्ट्रेस है, सो नई चीज़ नहीं है प्रॉब्लम्स, एवरीबडी हैज़ इट स्ट्रेस, बट वी हैव टू लर्न हाउ टू एंड्यूर इट एंड हाउ टू अंडरस्टैंड इट एंड हाउ टू सॉल्व अवर प्रॉब्लम्स। कोपिंग स्किल्स पे ध्यान करो, एंड आपका अभी CBSE करिकुलम और अच्छा लाइफ स्किल्स पे ध्यान दे रहा है, तो आप यू जस्ट फोकस ऑन इट व्हाट योर टीचर्स आर टेलिंग, एंड पेरेंट ऑल्सो हैज टू इन्वॉल्व इन अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑलवेज स्टे कनेक्टेड विद द पॉजिटिव रिसोर्सेज, जैसे पेरेंट है इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जितना भी हम कुछ भी करें ना, दे आर प्रोटेक्टर्स फॉर अस, सो वो प्रोटेक्ट करेंगे तो उनके साथ हमारा रिश्ता बहुत मजबूत रखना जरूरी है। और बच्चों ये भी याद रखो, आपके मेंटर्स आपके टीचर्स है, एवरीबडी इज वर्किंग फॉर यू फॉर योर बेनिफिट, सो ये रिसोर्सेस को आप सही यूटिलाइज करो, आपका गोल सेटिंग करो, एंड एनी टाइम यू हैव अ प्रॉब्लम डोंट कीप इट विद इन योर सेल्फ एंड डोंट टॉक टू रॉन्ग पीपल इन सोशल मीडिया। मोस्ट ऑफ द टाइम रियल कनेक्शंस छोड़ के हम किसी XYZ को हमारा प्रॉब्लम बताते हैं, वो कौन भी हमें पता नहीं, क्योंकि उधर से वो परपेट्रेटर है। बहुत सारा साइबर क्राइम्स ऑन चिल्ड्रन यही हो रहा है, क्योंकि हमें जिनको हम देखते भी नहीं उनको हमारा पर्सनल प्रॉब्लम्स हम बताते हैं। सो डोंट डू दैट, स्टे कनेक्टेड विद द रियल लाइफ पीपल एंड देन टॉक टू देम, टॉक टू योर फैमिली मेम्बर्स, कुछ भी है टॉक टू योर मेंटर्स, बिकॉज द प्लेटफॉर्म्स आर ओपन फॉर यू, वी ऑल आर वर्किंग फॉर यू, वी आर ट्राइंग टू चेंज, सिस्टमिक लेवल में हम चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे आप भी, यू आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम, सो you utilize, you become mentors for other people, so this is what I want to end the message with you, so utilize your highest potential and then reach your goal.

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, एफएम 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियोज की घड़ी में 9:30 हो चुके हैं। वक्त हुआ चला है उर्दू प्रोग्राम नए रंग का।

लोगों से मशवरा ना करने से इंसान बहुत से नुकसान उठाता है, इसलिए हमें चाहिए कि एक दूसरे से मशवरे को तरजीह दें। किसी इंसान के दिल में ईमान और हसद एक साथ नहीं रह सकते। माफ़ी नहायत ही अच्छा इंतकाम है। हर एक शख्स से उसकी समझ के मुताबिक बात किया करें। अगर नेक किरदार और इल्म में कमाल हासिल करना चाहते हैं तो जहालत की बातों और बदकिरदारी के करीब भी ना जाएं। तालीम का मकसद मिसाली इंसान की तकमील होता है। मोहतात लोगों की तरह काम करो, क्योंकि वो गलतियाँ कम करते हैं और काम ज़्यादा। मशवरा करना, नसीहत सुनना, उस पर अमल करना ही तो ज़िंदगी में रोशनी लाता है। बाज़ वक्त हमें नहीं मालूम होता कि इस काम का अंजाम क्या होगा। इस वक्त मशवरा करें तो बेहतर है, शायद इसका कोई अच्छा हल निकल आए। या फिर नसीहत पर अमल कर लें ताकि कोई नुकसान उठाना ना पड़े। जो ईमानदार होता है वो बिल्कुल आईने की तरह साफ़ व शफाफ होता है। वो किसी से उलट फेर नहीं करता, वो नेक नियति से काम करता है। इसका मामला बिल्कुल साफ साफ होता है, इसीलिए वो किसी से हसद भी नहीं करता, ना ही किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। वो जैसा अपने लिए कोई अच्छा काम और बेहतर काम करता है, वैसा ही दूसरे के लिए भी अच्छा और बेहतर काम ही करता है। माफ़ करना बहुत मुश्किल है। जिसने माफ़ किया मतलब उसने इंतकाम ले लिया, वो बहुत ताकतवर है। वरना इंतकाम लेने की बहुत सी सूरतें, माफ़ करना सबसे बड़ा इंतकाम है। हर आदमी की समझ अलग होती है, हर एक की सोच अलग होती है। हमको चाहिए कि आदमी को समझ लें और जब इसकी शख्सियत समझ में आ जाए तो फिर आगे कदम बढ़ाएं। बाज़ वक्त इंसान को समझे बगैर ही हम कोई ना कोई कदम उठा लेते हैं, ये अच्छी बात नहीं। इस वक्त हमें नुकसान उठाना पड़ता है। अच्छे काम करके और आलिम बनकर हम बहुत सी बुराइयों से दूर रहते हैं, क्योंकि जो बुराइयां हैं वो इंसान को पढ़ा लिखा होने के बावजूद जाहिल बना देती हैं। जहालत और बदकिरदारी इंसान को तबाह बर्बाद कर देती है। तालीम हासिल करना सिर्फ पेट भरना नहीं बल्कि इंसान बनना है। इंसान उसी वक्त मुकम्मल होता है जब वो एक मिसाली किरदार बनता है, दूसरों के लिए शमा बनता है। हर काम सोच समझ के, देखभाल के करें। जो मोहतात होते हैं मतलब जो एहतियात करते हैं, वो कभी ना तो मुसीबत में पड़ते हैं और ना ही दूसरों के लिए मुसीबत बनते हैं, क्योंकि वो बहुत सोच समझ कर कदम उठाते हैं। तो जाहिर है इनकी गलतियाँ भी कम से कम होती हैं।

0: समईन बहुत ही उम्दा बातें, अच्छे किरदार के मुताबिक अभी आप हरफ़े ताबंदा में समात कर रहे थे। समईन आज 10 मुहर्रम है, योम आशुरा है, वो दिन जब नवासाए रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसार साथियों ने करबला के तपते हुए मैदान में हक़ और सच्चाई के खातिर तारीख इंसानियत की सबसे बड़ी कुर्बानी दी। समईन, करबला सिर्फ़ एक तारीख़ी वाक़िया नहीं बल्कि जुल्म के खिलाफ डट जाने का एक अबदी दर्स है। आइए सुनते हैं आज के दिन की अहमियत पर एक तकरीर। तहरीर व पेशकश है जनाब नदीम अख्तर जैदी की।
1: दस मुहर्रम उल हराम इस्लामी तारीख का एक अजीम, दर्दनाक और सबक आमोज दिन है। इसी दिन मैदान

समय अभी आप समाध कर रहे थे, योमे आशुरा पर पेश किया गया खसूसी प्रोग्राम, तहरीर व पेशकश थी जनाब नदीम अख्तर जैदी की।

0: समय इन स्टूडियोज़ की घड़ी में 9:56 हो चुके हैं। बज़्म को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं डॉक्टर माइक सिलसिले के तहत डॉक्टर इरफाना तस्नीम से लिया हुआ इंटरव्यू। आज के इंटरव्यू का मौजू है ख्वातीन के सेहत के मसाइल।
1: इंसानी मुआशरे की बुनियाद औरत है। अगर घर को एक इमारत समझा जाए तो उसकी बुनियाद औरत होती है। माँ की गोद बच्चे की पहली दर्जगाह और उसकी सेहत पूरी नस्ल की सेहत का फैसला करती है। सेहतमंद माँ सिर्फ एक बच्चा नहीं, एक सेहतमंद मुआशरा पैदा करती है। तिब्बी और ख़ास तौर पर यूनानी नुक्ते नज़र से औरत का मिजाज यानी कि टेम्परमेंट आम तौर पर बारिद रतब यानी ठंडा तर होता है। इसी वजह से औरत में खून की कमी, जल्द थकान, हार्मोनल बिगाड़ जिसे हार्मोनल इम्बैलेंस कहते हैं, वज़न का बढ़ना ज़्यादा पाया जाता है। अफसोस की बात यह है कि औरत घर वालों की दवा बन जाती है लेकिन अपनी बीमारी को नज़रअंदाज करती रहती है। औरत दर्द छुपाने की आदत रखती है और इसी आदत से बीमारी बढ़ जाती है। यूनानी तिब के मुताबिक सेहत 6 चीज़ों पर मबनी होती है। सबसे पहले हवा, ग़िज़ा, हरकत और सुकून, नींद और बेदारी, इस्तेफराग यानी कि फासिद मादों का निकलना जैसे पसीना, पेशाब, माहवारी और आखिर में नफसियात यानी कि जहनी सुकून। जब इन में बिगाड़ आता है तब औरतों के अमराज पैदा होते हैं। खून की कमी, ये औरतों का सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला मर्ज है, ख़ास तौर पर लड़कियों और जवान औरतों में। सारे आलम में तकरीबन 30% औरतें जो कि

से 50 साल के दरमियान होती है, ये खून की कमी से मुतासर होती हैं, यानी कि तकरीबन 540 मिलियन औरतें जो हामिला ना हो और 32 मिलियन हामिला औरतें सूलखिनिया यानी कि एनीमिया का शिकार होती हैं। कुल मिलाकर 500 मिलियन से ज़्यादा ख़वातीन खून की कमी से मुतासर होती हैं। हर 3 में से एक औरत आलमी सतह पर इसका शिकार होती है। हिंदुस्तान में सर्वे के मुताबिक 15 से 50 साल के उम्र के दरमियानी औरतों में तकरीबन 57% लोगों में खून की कमी पाई गई है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जमरे में 53 से 54% ख़वातीन आती हैं। हामला औरतें 52% एनीमिक पाई गई हैं, मतलब हिंदुस्तान में आधी से ज़्यादा औरतें खून की कमी से मुतासिर है। सारे आलम में 30% और हिंदुस्तान में 55 से 57% यानी दुगनी तादाद में खून की कमी पाई जाती है। अगर हम देखें तो तफसीली वजूहात इस एनीमिया या सूलखिनिया के ये हैं कि माहवारी में कसरत से खून का ज़ाया होना, नाश्ता छोड़ देना, अक्सर लोग नाश्ता नहीं करते हैं, या फिर चंद लोग ऐसे हैं जो सिर्फ चाय पर गुजारा करते हैं या फिर चाय बिस्किट खाते हैं, तो बाज़ लोग डाइटिंग करते हैं जिसकी वजह से ग़िज़ा सही तौर पर नहीं लेते हैं, और ये नहीं बल्कि बाज़ हामिला औरतें हैं जो सही ग़िज़ा नहीं लेती हैं, और फिर आखिरी उसमें आता है कीड़े जरासीम जो हमारे पेट में पाए जाते हैं, इनकी वजह से खून की कमी होती है। अब खून की कमी के अलामात जो आम तौर पर पाए जाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त सांस का फूलना, आँखों के नीचे स्याही या फिर होंठों का सफ़ेद हो जाना, हाथ पांव ठंडे हो जाना, दिल घबराना, याददाश्त की कमज़ोरी। खून की कमी से होने वाले पेचीदा नुकसान में ये है कि दिल की धड़कन में बेकायदगी पाई जाती है, कभी बेहोशी हो जाती है, इम्तिहान में तवज्जो की कमी होती है, बच्चों का कम वज़न पैदा होना यानी जो बच्चे नौमौलूद होते हैं उनका वज़न बहुत कम होता है। खून कम हो तो सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि हिम्मत भी कम हो जाती है। खून की कमी को दूर करने के लिए ये घरेलू तदाबीर अख्तियार की जा सकती है। सुबह खाली पेट यानी नहार मुंह 1 चम्मच शहद लें और रात में भिगोए हुए 5 मुनक्खे लें और इस्तेमाल करें। इससे बहुत तेज़ी से खून में इजाफा हो जाता है। और दूसरी तरकीब जो है जिसे ABC जूस कहते हैं, यानी कि आप चुकंदर लें, उसमें गाजर का इजाफा करें और एप्पल यानी कि सेब इसमें डालें, इसका जूस बनाएं और इस्तेमाल करें। दूसरा नुस्खा ये है कि आप चुकंदर लें, उसमें गाजर डालें, अनार का जूस डालें और चाहे तो टमाटे का भी इजाफा करें। इससे बहुत तेज़ी से खून में इजाफा होगा। गुड़ और तिल के लड्डू भी बहुत ही मुफीद और फायदेमंद होते हैं। पालक का इस्तेमाल करें और इसके अलावा कच्चे जो काले चने होते हैं उसे रात में भिगोएं और सुबह इसमें स्प्राउट्स यानी मुलके पैदा हो जाते हैं, आप उसका इस्तेमाल गुड़ के साथ करें। ये नहायत ही मुफीद फायदेमंद साबित होगा। यही नहीं बल्कि कलेजी के इस्तेमाल से भी खून में बहुत तेज़ी से इजाफा होता है। इसके अलावा आप रात में सोते वक्त 2 अदद खुबानी भिगने डालें, थोड़ी सी किशमिश या मुनक्खा, 2 अदद अंजीर भिगोएं, इसके साथ एक 4 अदद बादाम भिगोएं और इसका इस्तेमाल सुबह सवेरे नहार पेट करने से ये बहुत ही मुफीद और फायदेमंद होगा। यही नहीं बल्कि आप दाल जब इस्तेमाल करते हैं, दाल या पालक, इस पर नींबू निचोड़ें। नींबू निचोड़ने से फायदा ये होगा कि आयरन एब्जॉर्प्शन दुगना हो जाएगा। यही नहीं बल्कि हम आम तौर पर बचपन में अक्सर बच्चे चिक्की खाते हैं जो गुड़ और तिल से बनाई जाती है, या फिर फली और गुड़, इसके इस्तेमाल से भी खून में काफ़ी हद तक इजाफा होगा।
और जो फल होते हैं, फल

विटामिन सी से भरपूर होते हैं। जब हम ये फल इस्तेमाल करें, जैसा कि आंवला, नींबू, जाम, टमाटर या फिर आप मौसम्बी, नारंगी, ये विटामिन सी से भरपूर होते हैं और विटामिन सी की मदद से आयरन एब्जॉर्प्शन बहुत जल्द होता है। जब भी आप इस्तेमाल करें, शक्कर की बजाय आप गुड़ इस्तेमाल करें, क्योंकि शक्कर से सिर्फ कैलोरीज बढ़ते हैं लेकिन गुड़ के इस्तेमाल से आपका खून का लेवल बहुत जल्द बढ़ जाएगा। और जो बाजार में दवाई मिलती है उसमें आप शरबते फौलाद या फिर खुरसे फौलाद इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहायत ही मुफीद और मुजर्रब साबित होगी। औरतों में, ख्वातीन में जो ज़्यादातर पाया जाता है, दूसरा मर्ज ये है कि माहवारी के मसाइल, अमराज हैज़। माहवारी औरत के जिस्म का फितरी निज़ाम है। ये असल में जिस्म की सफाई का अमल है। माहवारी बंद हो तो जिस्म में फासिद मादे जमा होने लगते हैं। इसकी आइए हम तफसील से अकसाम देखते हैं। एक वो होता है जिसे हम डिसमेनोरिया कहते हैं, यानी उस रेतम्स। जब माहवारी होती है तो उसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है। ये यूट्रस में यानी रहम में स्पैजम्स की वजह से होता है। दूसरा होता है खिल्लते हैज़, यानी खून कम आना। अक्सर खून की कमी या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। इसे एहतबाज़े हैज़ भी कहते हैं। फिर एक तीसरी किस्म होती है जिसे हम कसरते तम्स कहते हैं, यानी इसमें खून की बहुत ज़्यादा मकदार में ज़ाया हो जाता है और ये सूलखनिया यानी एनीमिया का एक बहुत बड़ा सबब बनता है। इसके अलावा औरतों में जो आम तौर पर मर्ज पाया जाता है वो सैलानुर रहम है, यानी कि वाइट डिस्चार्ज जिसे कहते हैं। ये रहम की कमजोरी की वजह से या फिर कोई इन्फेक्शन की अलामत होती है। घर पर आसान तौर तरीके से आप ये नुस्खे इस्तेमाल कर सकते हैं। अजवाइन और गुड़ का खैवा, यानी अजवाइन को उबाल लें, फिर उसमें गुड़ का इजाफा करें और इस्तेमाल करें। इससे काफ़ी हद तक आपको राहत मिलेगी। अदरक वाली चाय का इस्तेमाल करें, इससे भी दर्द में कमी होगी। गर्म पानी का बोतल यानी हॉट वाटर फर्मेंटेशन जिसे कहते हैं, आप एक थैली में पानी गर्म कर लें और इससे सेका लें। यही नहीं बल्कि सौंफ के पानी का भी इस्तेमाल करें, ये नहायत ही मुफीद होगा। इसके अलावा घर पर निर्मली होती है, वो भी चूसने से या उसके इस्तेमाल से सैलानुर रहम यानी कि वाइट डिस्चार्ज में नहायत ही फ़ायदा होगा। यही नहीं बल्कि मौसम में जब सिंघाड़े आते हैं तो वो सिंघाड़ों का पाउडर इस्तेमाल करने से भी, जो औरतों में कमर दर्द होता है और सैलानुर रहम की शिकायत होती है, उसमें काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। तीसरा मर्ज जो आलमी सतह पर देखा जा रहा है और अक्सर ख्वातीन इसमें मुब्तला होती हैं, वो है मोटापा। यूनानी तिब के मुताबिक मोटापा बलगम की ज्यादती से होता है। मोटापे के वजूहात देखें अगर हम, तो ज्यादातर ये है कि रात देर गए तक जागना, सुबह देर तक सोना, मीठी चीज़ों का ज्यादा इस्तेमाल, बेकरी के बने हुए अशिया का इस्तेमाल, मोबाइल पर ज्यादा देर तक रहना या फिर लाइफस्टाइल चेंजेस जो कहते हैं, उसकी वजह से अब आम तौर पर ये देखा जा रहा है घर बैठे हम सवारी के लिए उबर का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई सौदा सामान चाहिए तो जोमैटो से मंगा लेते हैं या फिर जिप्टो से मंगा लेते हैं। और खाना बनाने में अगर कोई मेहमान वगैरह आ गए हैं अचानक, तो आप जेप्टो या स्विगी से चीज़ें मंगा लेते हैं। तो जो आम तौर पर औरतों की वर्जिश होती है या जो एक्सरसाइज होता है वो बिल्कुल भी तौर पर नहीं हो रहा है। ये एक ख़ास वजह है मोटापे की। और इससे होने वाले नुकसान ज़्यादातर ये है कि पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, बांझपन, ज़ियाबतीस की ज़्यादती हो रही है या फिर ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है, घुटनों में या जोड़ों में दर्द होता है। मोटापा खुद एक मर्ज़ नहीं बल्कि कई अमराज की माँ है। घरेलू तदाबीर, नीम गर्म पानी में नींबू और शहद का इजाफा करें,
मेथी।

खाना भिगाकर इस्तेमाल करें, जीरे का पानी कसरत से इस्तेमाल करें, रात का खाना जल्दी खाएं। इलाज के तौर पर आप सुफूफ़े मुहाज़िल इस्तेमाल करें, अरख़े ज़ीरा इस्तेमाल करें, रोगन जैतून से मालिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप वर्जिश करने की या चलने की कोशिश करें। इसके बाद जो आम तौर पर पेचीदगियाँ पाई जाती हैं वो हमल या जच्चगी के दौरान पाई जाती है। हमल औरत की ज़िंदगी का नाजुक मरहला है। इसमें पाई जाने वाली मुमकिन पेचीदगियाँ ये हो सकती है कि प्री एक्लैम्शिया यानी बीपी का बढ़ जाना, जिस्टेशनल डायबिटीज़ यानी हमल के दौरान ज़ियाबतीस में मुब्तला होना, एनीमिया, सूलखनिया जिसका हम पहले से ही जिक्र कर चुके हैं, या फिर इसकी वजह से प्रीमेच्योर बच्चे का पैदा होना। इन सब परेशानियों से या दरगुजर होने से बेहतर है कि आप अच्छी ग़िज़ा लें, दूध का इस्तेमाल करें, अंडा इस्तेमाल करें, दाल, सब्ज़ी, खजूर बकसरत इस्तेमाल करें और अनार भी अपने ग़िज़ा में ज़रूर शामिल करें। नारियल पानी इस्तेमाल करें, सौंफ का पानी इस्तेमाल करें, इलायची और दूध इस्तेमाल करें, या फिर ज़रूरत हो तो किसी की निगहदाश्त में खमीरे मरवारीद, शरबते अनार इस्तेमाल कर सकते हैं। एक माँ की ग़िज़ा बच्चे की तकदीर लिखती है, तो माँ को चाहिए कि वह अच्छी से अच्छी ग़िज़ा ले, फाखा ना करे। औरतों में पाए जाने वाले अवारजात या अमराज में एक जहनी सेहत भी बहुत हद तक नुमायाँ तौर पर असर करती है। नफ्सियाती अमराज, औरत पर नफ्सियाती दबाव ज़्यादा होता है। नफ्सियाती अमराज जैसा कि डिप्रेशन, एन्जाइटी या फिर माइग्रेन, आधा सर दर्द, बेख्वाबी, ये सब शिकायतें पाई जाती हैं। इसके असबाब में ज़्यादातर पर ये होता है कि घर में ज़्यादातर बोझ, घर के कामकाज का बोझ, तनख़ीद, क्योंकि औरतें अक्सर तनख़ीद का निशाना बनती हैं, या फिर एक वजह ये भी होती है कि वो घर पर तन्हा होती है तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, या फिर हार्मोनल तब्दीलियों की वजह से भी नफ्सियाती अमराज में मुब्तला हो जाती हैं। घर पर आप शरबते गौजबान का इस्तेमाल कर सकते हैं इन कमज़ोरियों को दूर करने के लिए, या फिर खमीरे गौजबान का इस्तेमाल कर सकते हैं, रोगने बादाम दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। धूप में ज़्यादातर निकलें आप, अपने आप को बंद कमरे अंधेरे में ना रखें, धूप में निकलें, बाहर जाएं, रोशनी उजाले में रहें, सैर करें, जिक्र करें, किसी अपने से बात करें, ज़हनी सुकून आदि दवा होती है। इसके बाद आजकल ज़्यादा तौर पर जो औरतों में अवारजात या अमराज देखे जा रहे हैं उनमें अहम है हड्डियों की कमज़ोरी। माहवारी के बंद होने के बाद ईस्ट्रोजन कम होता है और हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों की कमज़ोरी। दुनिया भर में तकरीबन 200 मिलियन ख़वातीन इसमें मुब्तला है। हर 4 में से एक औरत यानी 25% औरतें इस मर्ज़ में मुब्तला है। माहवारी के बंद होने के बाद यानी मेनोपॉज के बाद इसकी रिस्क ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। ईस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है इसमें गिरावट आ जाती है, जिसकी वजह से हड्डियां कमज़ोर होने लगती है। एक सर्वे के मुताबिक 10% औरतें जो 60 साल की उम्र की हैं उनमें ये मर्ज़ पाया जाता है। 70 साल के बाद 20% औरतों में ये मर्ज़ लाहक होता है। 80 साल के बाद तकरीबन 40% औरतों में ये लाहक होता है और 90 साल के बाद 66% औरतों में ये मर्ज़ पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि जितनी उम्र बढ़ती जाएंगी उतनी हड्डियाँ कमज़ोर होती जाएंगी। 50 साल के बाद आधी औरतों में यानी 50% औरतों में बोन डेंसिटी बहुत कम हो जाती हैं। औरतों को मर्द की बनिस्बत
5 गुना ज़्यादा

ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ये आंकड़े तो पहले के हैं, लेकिन कोविड के बाद ये देखा गया है कि ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ही कम उम्र औरतों में, हत्ता के टीनेजर्स में भी देखा जा रहा है। यही नहीं बल्कि छोटे बच्चे भी जो घर पर रह रहे हैं, ज़्यादा खेलकूद नहीं करते हैं, उनमें भी ये शिकायत पाई जा रही है। ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से जो रिस्क होते हैं वो ये है कि हर दो औरतों में से एक पोस्ट मीनोपॉजल औरत, यानी हैज के बंद होने के बाद कोई ना कोई एक औरत की ज़िंदगी में फ्रैक्चर यानी हड्डी टूटने का रिस्क होता है। हर तीन में से एक औरत फ्रैक्चर के ख़तरे में होती है। 90% से ज़्यादा हिंदुस्तानी ख़वातीन में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। ये सबसे अहम वजह है ऑस्टियोपोरोसिस की। और अगर विटामिन डी की कमी हो तो चाहे हम जितना भी कैल्शियम लें, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। विटामिन डी नहायत ही मुफीद और ज़रूरी है। आप ऐसी ग़िज़ाएँ लें जिसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा मकदार में पाया जाता है, जैसा कि दूध। अगर डेली ख़वातीन एक गिलास दूध ले तो उसमें 250 से 300 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है, जो कि एक गोली लेने से, कैल्शियम की गोली खाने से बेहतर है। यही नहीं बल्कि आप डेयरी अशिया इस्तेमाल करें, जैसे कि दही, छाछ, पनीर या चीज़। चीज़ आप एक लिमिट में इस्तेमाल करें, ज़्यादा ना करें। हरी सब्ज़ियाँ बहुत ही ज़रूरी होती हैं, जैसे कि पालक, मेथी, ड्रमस्टिक, मूंगा या सोजनी की फली जिसे कहते हैं, उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। सरसों का साग, इसमें सिर्फ कैल्शियम ही नहीं बल्कि मैग्नीशियम और आयरन भी होता है। आप तखम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करें। तिल, ये जो वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए कैल्शियम का सबसे बेहतरीन ज़खीरा है। रागी का इस्तेमाल करें, बादाम, अखरोट, चिया सीड्स, तुख्म अलसी, ये नहायत ही मुफीद है। आप एक चम्मच तिल इस्तेमाल करें। एक चम्मच तिल रोज़ाना खाने आधा ग्लास दूध पीने के बराबर है। डेली आप रोज़ाना सुबह उठकर एक चम्मच भुनी हुई तिल और चार बादाम खाएंगे तो इससे कैल्शियम फौरी तौर पर बढ़ जाएगा। यही नहीं बल्कि आप ग़िज़ा में दाल का इस्तेमाल करें, काला चना ज़्यादा इस्तेमाल करें, राजमा, सोयाबीन, इसमें बहुत ही ज़्यादा मकदार में कैल्शियम और प्रोटीन्स पाए जाते हैं। टोफू का इस्तेमाल करें, कुल्थी या फिर रागी की रोटी इस्तेमाल करें। यही नहीं बल्कि मछली, अंडा इस्तेमाल करें और कलेजी का भी कसरत से इस्तेमाल करें। हर औरत को चाहिए कि वो रोज़ाना कम से कम एक अंडा ज़रूर अपनी ग़िज़ा में इंक्लूड करें। और मेवे जैसा कि मौसमी, अंजीर, खजूर, मौज़, ये ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आप और रोज़ाना आदत बना लें कि 15 से 20 मिनट आप सुबह सूरज की रोशनी में रहे, यानी कि 8 से 10 बजे के दरमियान सुबह की धूप ज़रूर ले, और आप देखें कि ये धूप आपके चेहरे पर और आपके हाथ पर ज़रूर लगे। आप इन चीज़ों का इस्तेमाल रोक दें, यानी एहतियात से करें। कोल्ड ड्रिंक्स, ज़्यादा मकदार में चाय, कॉफ़ी, चिप्स जो कि तेल में तले गए हों, या ज़्यादा मकदार में नमक, और औरतें बिल्कुल भी स्मोक ना करें। ऐसा करने से कैल्शियम के लेवल्स में कमी आती है। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए आप रोगन जैतून की मालिश ज़रूर करें। कैंसर की बेदारी, औरतों में चूंकि आजकल कैंसर बहुत आम हो रहा है, ब्रेस्ट कैंसर, ये ख़वातीन को चाहिए कि वो अपने मुआयना बार बार कराते रहें, ये देखें कि कोई गांठ तो ना आई हो, या फिर कोई सूजन तो ना हो, या फिर कोई ख़िस्म का अखराज तो ना हो रहा है, या फिर आपका बेवजह माहवारी की तरह कोई खून आ रहा है, या बदबूदार सफ़ेद पानी का अखराज हो रहा है, तो आप हर महीना ख़ुद से मुआयना कर ले। जल्द तशखीस ज़िंदगी

0: ये बचाती है। इस मामले में लापरवाही ना करें और सफाई का ख्याल रखें। माहवारी में सफाई का ख्याल रखें, अपने कपड़े बार बार तब्दील करते रहें, वरना इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस होते हैं। और रोज़ाना 8 से 10 ग्लास पानी इस्तेमाल करें और अपनी सफाई, पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि औरत की सेहत उसकी ज़ाती नहीं, कौमी जिम्मेदारी है। जब औरत सेहतमंद होती है तो घर खुशहाल होता है, और जब घर खुशहाल होता है तो मुआशरा तरक्की करता है। औरत को सिर्फ इज्जत नहीं, सेहत भी चाहिए।
1: समय अभी आप समाप्त कर रहे थे डॉक्टर माइक पर सिलसिले के तहत डॉक्टर इरफाना तस्नीम से तकरीर। स्टडीज की घड़ी में 10:19 और 40 सेकंड हो चुके हैं। घड़ी की सुइयों ने वक्त का इशारा किया और हम हाजिर हो गए आपके पसंदीदा प्रोग्राम यानी पुराने हिंदी गीतों से सजा प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा लेकर। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे मोहब्बत के उन्वान पर बातें, और साथ ही साथ हम आपको सुनाएंगे पुराने हिंदी फिल्मी गीत। दोस्तों, मोहब्बत जो है वो जिंदगी का असल सुकून है। मोहब्बत या प्यार दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है। ये एक ऐसी चीज है जो हर इंसान महसूस कर सकता है, चाहे कोई भी जुबान बोलता हो। प्यार की बात सबको समझ आती है। सच बात तो ये है कि अगर दुनिया में प्यार ना हो तो जिंदगी बिल्कुल फीकी, बेजान और उदास हो जाएगी। ये मोहब्बत ही है जो हमें रोज सुबह उठने और जीने की वजह देती है। समय बज़्म में होगी मोहब्बत से मुतालिक और भी बातें, आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में ये खूबसूरत गीत।

समय आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग नैरंग के इस बस में हम आपको गीत सुरीले गाता जा सिलसिले के तहत सुना रहे हैं पुराने हिंदी फिल्मी गीत, और साथ ही हम बात कर रहे हैं प्यार के उन्वान पर। जी हाँ, आज मुझे एक ऐसे मौजू पर बात करने का मौका मिला है जो कायनात का सबसे खूबसूरत और ताकतवर जज्बा है, और वो है प्यार। जी हाँ, जिसे मोहब्बत भी कहते हैं। मोहब्बत सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं बल्कि एक मुकम्मल कायनात है। ये वो एहसास है जो इंसान को इंसान बनाता है और दिलों को एक दूसरे से जोड़ता है। मोहब्बत की वसअत की अगर हम बात करें, जब भी हम लफ्ज़ प्यार या मोहब्बत सुनते हैं तो अक्सर जहन में सिर्फ एक ही रिश्ता आता है, लेकिन हकीकत में मोहब्बत का जो दायरा है वो बहुत ही वसी है। मोहब्बत वालिदैन से भी होती है। जी हाँ, ये दुनिया की सबसे बेलौस और पाकीज़ा मोहब्बत है जो कुर्बानी सिखाती है। इसके अलावा बहन भाइयों का प्यार, जी हाँ, इसमें दोस्ती, शरारत और एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ शामिल होता है। दोस्ती का जो रिश्ता है उसमें भी बहुत ही प्यार होता है, जहाँ बग़ैर किसी खून के रिश्ते के इंसान एक दूसरे के लिए मुखलिस हो जाता है। इंसानियत से भी मोहब्बत होती है। जी हाँ, सबसे आला दर्जे की अगर हम मिसाल दें तो मिसाल जो मोहब्बत की दें तो वो है रंग, नस्ल और मज़हब से बालातर होकर हर इंसान का एहतराम करना ही मोहब्बत की आला मिसाल है। दिलों में अपनी मोहब्बत बसा के तो देखो, जी हाँ, दिलों में अपनी मोहब्बत बसा के तो देखो, ये ज़िंदगी तुम्हें गुलजार ही नजर आएगी। बज़्म में होगी और भी बातें, आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

समय इन मौजूदा दौर में प्यार की ज़रूरत क्यों है? जी हाँ, आजकल दुनिया में हर तरफ गुस्सा, टेंशन और लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्यार ही वो अकेली चीज़ है जो दिलों को जोड़ सकती है और नफ़रतों को ख़त्म

जी हाँ, आजकल दुनिया में हर तरफ गुस्सा, टेंशन और लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्यार ही वो अकेली चीज़ है जो दिलों को जोड़ सकती है और नफ़रतों को ख़त्म कर सकती है। प्यार हमें दूसरों का ख्याल रखना सिखाता है, उनकी मदद करना और उनकी गलतियों को माफ़ करना सिखाता है। जिस घर में या मुआशरे में प्यार होता है, वहाँ सुकून ही सुकून होता है। मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। ये इंसान को खुदगर्दी से दूर करती है। जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं, तो आप अपनी खुशी से पहले उसकी खुशी का सोचते हैं। प्यार इंसान के अंदर का गुस्सा और चिड़चिड़ापन खत्म करके उसे एक नर्म दिल और अच्छा इंसान बना देती है। मोहब्बत कोई एक चीज़ नहीं है जिसे पैसों से खरीदा जा सके या किसी से जबरदस्ती लिया जा सके। ये तो दिल से निकलती है और दिल तक जाती है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसीलिए हमें चाहिए कि हम सबके साथ प्यार और तमीज से बात करें, किसी का दिल ना दुखाए और जहाँ तक हो सके खुशियाँ बांटें। क्योंकि दुनिया में सिर्फ मोहब्बत ही वो वाहिद चीज़ है जो बांटने से कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती ही जाती है। तो क्यों दोस्तों, करेंगे ना आप सभी सब एक दूसरे से मोहब्बत और एक मिसाल कायम करेंगे। आइए सुनते हैं अगला गीत कुमार सानू की आवाज़ में।

101.9 मेगाहर्ट्स पर आप सुन रहे हैं उर्दू का प्रोग्राम अन्नरंग, जिसमें हम आपको सुना रहे हैं गीत सुरीले गाते जा सिलसिले के तहत पुराने हिंदी फिल्मी गीत। और साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं दोस्तों मोहब्बत के उन्वान पर। जी हाँ, मोहब्बत एक ऐसा प्यारा एहसास है, लेकिन जब ये एहसास कागज़ पर स्याही बनकर उतरता है तो उसे हम खत कहते हैं। एक दौर था जब मोहब्बत का दूसरा नाम ही खत हुआ करता था। खत सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं होता था, बल्कि ये लिखने वाले के दिल का धड़कता हुआ हिस्सा होता है, जिसे वो बहुत संभाल कर अपने महबूब के नाम करता है। शायद आज के डिजिटल दौर में जब हम

हम सेकंड्स में मैसेजेस भेजते हैं, हमने वो बेचैनी और इंतजार को खो दिया है जो खत के साथ जुड़ा था। खत लिखने के लिए इंसान को तन्हाई चाहिए होती है, गहरी सोच चाहिए होती है और अपने जज्बात को लफ्जों में पुरोना पड़ता है। खत का वो पहला लफ्ज लिखना, फिर मिठाना, जी हाँ, फिर लिखाना, लिखना यही तो प्यार का असल हुस्न है। जब खत पहुंचता था तो उसे बार बार पढ़ना, हाय, उसकी खुशबू को महसूस करना और उसे किताबों या तकिए के नीचे छुपा कर रखना, शायद वो आज के दौर में सब कुछ कहीं गुम सा गया है। वो मोहब्बत हमेशा के लिए अमर हो जाती है, जी हाँ, जो संभाल कर रखी जाती है। इंसान बूढ़ा तो हो जाता है लेकिन मोहब्बत का वो खत हमेशा जवान रहता है। आखिर में मैं बस यही कहूंगी कि टेक्नोलॉजी जितनी भी आगे बढ़ जाए, दिल के जज्बात को बयान करने के लिए जो सुकून एक खत में है वो कहीं और नहीं। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी साहब का ये गीत, जिसके बोल हैं, लिखे जो खत तुझे।

दोस्तों, मैं तो बस इतना कहूंगी कि रिश्ते चाहे जो भी हो, जब तक उन रिश्तों में मिठास शामिल ना हो, वो अधूरे रह जाते हैं। तो आइए आज हम इस बात का अहद करें कि इस तेज रफ्तार दुनिया में अपने जो जज्बे हैं उसको खत्म नहीं होने देंगे, अपने दिलों में प्यार को हमेशा जिंदा रखेंगे और अपने प्यारों को ये एहसास भी दिलाते रहें कि कभी दिलाने के लिए अपने जो अल्फाज होते हैं उनका सहारा भी जरूर लेंगे। क्योंकि याद रखिए, इंसान तो जो है वो चले तो जाते हैं इस दुनिया से, मगर मोहब्बत का जो एहसास है वो हमेशा जिंदा रहता है। समय स्टूडियोज की घड़ी में 10:56 हो रहे हैं। तो आइए बज्म के इख्तिताम से कबल सुनते हैं पयाम शब। तहरीर वो पेशकश है जनाब नदीम अख्तर जैदी की।

0: जो दे न सका पहाड़ों को बर्फ की चादर, वो मेरी बांझ जमीन को कपास क्या देगा। हकीकत पसंदी, दुरुस्त तवक्कयात और सही जगह उम्मीद वाबिस्ता करना हर इंसान के लिए ज़रूरी है। इंसान को हर किसी से हर चीज़ की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जो शख्स खुद अपनी जिम्मेदारी पूरी ना कर सके या दूसरों के बड़े मसाइल हल न कर पाया हो, उससे अपनी ज़रूरियात पूरी होने की तवक्के रखना मुनासिब नहीं। यह नसीहत है कि अपनी मेहनत, अपनी सलाहियत और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करें। उम्मीदें हमेशा अहल और काबिल लोगों से वाबिस्ता करें, क्योंकि गलत जगह रखी गई उम्मीद अक्सर मायूसी का सबब बनती है। माशरे में आज़ाद सोच, मुस्बित फिक्र और तन्हाई में गौर व फिक्र करने की कदर होनी चाहिए, ना कि उसे जुर्म समझा जाए। जब इंसान को सोचने, सवाल करने और अपनी राय बनाने की आज़ादी ना मिले, तो बेमकसद भटकाऊ और बेसिमती जन्म लेने लगती है। अपनी सोच को जिंदा रखें, इल्म हासिल करें और अपने अक्ल व शऊर को दुरुस्त रास्ते पर इस्तेमाल करें। साथ ही दूसरों के ख्यालात का भी एहतराम करें, क्योंकि एक सेहतमंद माशरा वही होता है जहां इख्तलाफ राय को बर्दाश्त किया जाए और इंसान को सही समत इख्तियार करने के मौके फराहम किए जाएं।
1: दोस्तों, प्रोग्राम का जो सफ़र है यहीं तमाम होता है। कल इन्हीं मीटर्स पर आपसे हमारी दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर। जय हिंद।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है। स्टूडियोज की घड़ी में 11 बजने ही वाले हैं। चंद ही लम्हों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार बारी बारी सुन सकेंगे।

0: वर्ग के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज्ड कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए।

80 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट्स जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो NCB ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर में चढ़ावे और दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया था। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 58 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा, मैं हूं राखी आपके साथ।

लव स्टोरी फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। सपने कितने सुंदर, कितने प्यारे, ये हमारी आंखों में रंग भरते हैं, दिल में उम्मीद जगाते हैं और जिंदगी को मुस्कुराने की वजह देते हैं। कुछ सपने रात की नींद में आते हैं तो कुछ खुली आंखों से देखे जाते हैं। कोई अपनों के साथ खुशियों का संसार बसाने का सपना देखता है तो कोई अपनी मंजिल तक पहुंचने का। सपनों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। वो बताते हैं कि अगर हौसला हो तो कल्पना भी एक दिन हकीकत बन जाती है।

लिबास फिल्म का गाना आपने सुना, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। कहते हैं अगर जिंदगी में सपने न हो तो जीने का उत्साह भी अधूरा रह जाता है। सपने ही तो हैं जो हमें नई उम्मीद देते हैं, नई राह दिखाते हैं और हर सुबह को एक नया अर्थ देते हैं। कुछ सपने बचपन की मासूम आंखों में पलते हैं, कुछ जवानी के अरमानों में रंग भरते हैं, तो कुछ उम्र के हर पड़ाव पर हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा बन जाते हैं। सपनों की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, वो मन के उस खुले आकाश में उड़ते हैं जहां हर इच्छा को पंख मिल जाते हैं।

मासूम फिल्म का गाना आपने सुना आरती मुखर्जी की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और

वक्त हुआ है 12:31 और ठीक 3 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

हरजाई फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। निदा फाजली ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। सपनों की दुनिया सचमुच बड़ी निराली होती है। यहाँ ना कोई बंधन होता है ना कोई दूरी। मन जहाँ चाहे जैसे चाहे उड़ान भर सकता है। सपने कभी फूलों की तरह कोमल लगते हैं तो कभी इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगे। कभी वो हमें मुस्कुराने की वजह देते हैं तो कभी किसी अपने की मीठी याद बनकर आंखों में उतर आते हैं। जिंदगी की भागदौड़ में जब मन थकने लगता है तब यही सुंदर सपने हमें सुकून का एक कोना देते हैं। वो बताते हैं कि हर रात के बाद एक नई सुबह होती है और हर मुश्किल के बाद खुशियों की एक नई किरण हमारा इंतजार कर रही होती है।

ना खुदा फिल्म से आपने ये नज़्म सुनी नितिन मुकेश की आवाज़ में लता मंगेशकर के साथ। इसे लिखा निदा फाजली ने और संगीत दिया खयाम ने। सपनों की कोई भाषा नहीं होती, लेकिन वो हर दिल की बात समझ लेते हैं। किसी का सपना अपने परिवार की मुस्कान होता है, किसी का अपने जीवन में सफलता पाना, तो किसी का अपने प्रियजनों के साथ कुछ सुकून के पल बिताना। छोटे छोटे सपने ही तो जीवन को बड़ा और खूबसूरत बना देते हैं।

बरसात की एक रात फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। और जब इन सपनों को साथ मिलता है मधुर संगीत का, तो हर धुन दिल के किसी कोने में जाकर बस जाती है। कोई गीत हमें बीते हुए सुनहरे दिनों की याद दिलाता है, कोई आने वाले कल की उम्मीद जगाता है, तो कोई बिना कुछ कहे ही मन की बात कह जाता है। यही तो है संगीत का जादू, जो सपनों को सुर देता है और भावनाओं को आवाज़।

वारिस फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की आवाज में। वर्मा मलिक ने इसे लिखा और संगीत दिया उत्तम जगदीश ने। वक्त हुआ है 12:54 और ठीक 50 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में ठीक 1 बजे सुनिए समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये।

0: हैं। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा, सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृहमंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच संबंध व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते यानी सीईटीए के साथ अहम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। लंदन में आयोजित एक व्यापार सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत और ब्रिटेन के उद्योग जगत से आपसी सहयोग को और मजबूत करने, नवाचार को गति देने तथा साझा समृद्धि के लिए अधिक महत्वाकांक्षी निवेश करने का आह्वान किया। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर में चढ़ावे और दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया था। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्य में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर ही सिमट गई। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सोहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 57 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत सुहाने, मैं हूँ राखी आपके साथ।

भीगी रात फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने। गीत सुहाने जहां हर धुन कोई याद जगाती है, हर शब्द किसी एहसास को छू जाता है। पुराने सुरीले गीत समय के साथ पुराने नहीं होते, बल्कि हर बार सुनने पर नए से लगते हैं। इन गीतों में प्यार है, इंतजार है, रूठना मनाना है, सपने हैं और जिंदगी के अनगिनत रंग हैं। कभी कोई धुन चांदनी रात को और भी हसीन बना देती है, तो कभी बारिश की बूंदों में भी संगीत खुल जाता है।

काला बाजार फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने।

दुल्हन एक रात की फिल्म का आपने गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज में। राजा मेहदी अली खान ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने। एक सपने की सुंदर कल्पना, सपने में एक मासूम सी इल्तजा, कबूल हो जाए तो सो जाऊं।

जाल फिल्म का गाना आपने सुना हेमंत कुमार की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। कुछ बातें होठों तक आकर भी शब्द नहीं बन पाती, वो दिल के किसी कोने में चुपचाप बस जाती हैं, और जब कोई मधुर धुन उन्हें छूती है तो वही खामोशी एक दास्तान बन जाती है।

अनपढ़ फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। राजा मेहती अली खान ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन

वक्त हुआ है 1:35 और ठीक 25 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

ये रात फिर ना आएगी। इस फिल्म से आपने गीत सुना महेंद्र कपूर की आवाज में। इसे लिखा SH बिहारी ने और संगीत दिया OP नैयर ने।

ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि उस दिल की पुकार है जो अपने किसी बेहद अजीज को हर धड़कन में महसूस करता है। इंतजार की खामोशी हो या यादों की महक, ये नगमा हर उस एहसास को आवाज देता है जिसे शब्दों में कहना आसान नहीं होता। पतिता फिल्म का ये गाना आपने सुना लता और हेमंत कुमार की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

प्यासा फिल्म का गाना आपने सुना, गीता दत्त की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया एस डी बर्मन ने। कभी कभी जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जब कोई साधारण सी बातचीत भी दिल में हमेशा के लिए बस जाती है। न जाने किस बात में ऐसा जादू होता है कि अनजाने में ही दो दिल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। कुछ एहसासों को नाम नहीं दिया जा सकता, बस उन्हें महसूस किया जा सकता है।

ममता फिल्म का गाना आपने सुना, हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने। पुराने सुरीले गीतों की यही तो खूबी है कि वो प्रेम को बड़े सलीके और सादगी से बयान करते हैं। उनमें अपनापन है, भरोसा है और साथ निभाने का एक खामोश सा वादा भी।

अनुपमा फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। इसे लिखा कैफी आजमी ने और संगीत दिया हेमंत कुमार ने। वक्त हुआ है 1:57 और ठीक 20 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन के सेशल्स के राजकीय यात्रा पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारतीय रक्षा बलों का एक दल भारतीय नौसेना के 2 जहाजों के साथ समारोह में भाग लेगा। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी से बातचीत करेंगे और द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026-2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट्स जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच

0: बढ़ाना होगा।
1: सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
2: गृहमंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो यानी एनसीबी ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर में चढ़ावे और दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया था। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमेरिकी सेना का सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। लंदन में खेले गए FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हरा दिया। पाकिस्तान के अबू बकर ने पहले क्वार्टर में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर अपनी टीम को बढ़त दिलाई। इसके बाद भारतीय टीम ने शानदार वापसी करते हुए लगातार 7 गोल दागे। भारत का अगला मुकाबला रविवार को इंग्लैंड से होगा। आयरलैंड के बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi will embark on a 3-day state visit to Seychelles this morning to attend the country's Golden Jubilee National Day celebrations as the guest of honour. This will be his first visit to Seychelles since 2015. The Ministry of External Affairs said an Indian Armed Forces contingent along with 2 Indian Navy ships will participate in the celebrations. During the visit, the PM will hold talks with Seychelles President Dr. Patrick Hermini to review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Home Minister Amit Shah has laid a detailed roadmap to achieve the vision of a drug-free India. During a meeting organized by the Narcotics Control Bureau yesterday, the Home Minister launched the vision document on narcotics control from 2026 to 2029. He also launched a drug disposal fortnight under which over 2,09,000 kilograms of seized narcotic substances valued at around 6,000 crore rupees will be destroyed. Earlier, addressing the 10th apex level meeting of the NACO Coordination Center in New Delhi, the Home Minister called for a united war against

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 58 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई मैं हूं राखी आपके साथ।

नदिया के पार फिल्म का गाना आपने सुना। हेमलता और जसपाल सिंह की आवाज में रविंद्र जैन ने इस गीत को लिखा और संगीत भी दिया रविंद्र जैन ने।

सौदागर फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। रविंद्र जैन ने इस गीत को लिखा और संगीत भी दिया रविंद्र जैन ने। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं एहसासों से बनते हैं, उनमें न कोई शर्त होती है न कोई दिखावा, बस साथ निभाने का एक सच्चा वादा होता है।

रजनीगंधा फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। योगेश ने इसे लिखा और संगीत दिया सलिल चौधरी ने। कुछ खुशबुएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ फूलों में नहीं, यादों में भी बसी होती हैं। वो समय के साथ फीकी नहीं पड़ती, बल्कि हर बार किसी अपने का एहसास और गहरा कर जाती हैं।

खानदान फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। नक्श ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 2:34 और ठीक 46 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

अनाड़ी फिल्म का यह नगमा था और आवाज़ें थी लता जी और मुकेश साहब की। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर हमराही की इस दिलकश महफिल में, और हमराही में अब आगे बढ़ते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत नगमे के साथ, और वो नगमा है एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म मेरा नाम जोकर से। राज कपूर साहब के निर्माण और निर्देशन में बनी इस फिल्म में खुद राज कपूर साहब ने बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया था, और उनके साथ थे ऋषि कपूर, राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार, धर्मेंद्र, पद्मनी, सिमी ग्रेवाल, दारा सिंह, ओम प्रकाश, राजेंद्र नाथ, अचला सचदेव वगैरह। ये अपने दौर की एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी जिसके गीत बहुत ही प्यारे थे और उसके गीतों को संगीत से संवारा था, यानी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मधुर संगीत से संवारा था शंकर या किशन साहब की जोड़ी ने। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा है आशा जी और मुकेश साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर हमराही की इस दिलकश महफिल में आपके लिए

संगीतकार ने, जिनका नाम बस थोड़ी ही देर में हम लेंगे, पहले सुनते हैं ये बहुत ही खूबसूरत नगमा। और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन साहब।

फिल्म का ये नगमा था और आवाज़ें थी लता मंगेशकर जी और मुकेश साहब की। इस गीत को लिखा था हसरत जयपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा था शंकर जयकिशन साहब की जोड़ी ने। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर महफिल सजी है हम राही की। और दोस्तों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताइएगा अपने पैगाम के ज़रिए, अपने संदेशों के ज़रिए। और उसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं, और मेल आईडी है हमारा, नोट कर लीजिए जल्दी से ताकि आप अपने पैगाम, अपने फीडबैक हम तक पहुँचा सकें। मेल आईडी है हमारा FM गोल्ड AIR।

FMGOLDAIRDELHI@gmail.com तो इस पे आप अपने पैगामात हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा और आप अपने दिल की बात हमसे ज़रूर कीजिएगा। रात के इस पुरसकून महफिल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। पुराने फिल्मी गीतों की सबसे ख़ास बात यही है कि वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करते बल्कि अपने दौर की रूह, रिश्तों की गर्माहट और ज़िंदगी की सादगी को भी अपने साथ लेकर चलते हैं। और ऐसा ही एक बहुत ही खूबसूरत नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं। वो अपने आप में बेहद ख़ास है। कई बेहतरीन आवाज़ों का ऐसा खूबसूरत संगम है जो सुनते ही दिल में एक अलग सी रौनक भर देता है। हर गायक की आवाज़ इस गीत में अपना अलग रंग बिखेरती है और मिलकर एक यादगार समा बांध देती है। इस गीत को अपनी सुरीली आवाज़ों से सजाया है लता जी, गीता दत्त जी, मुकेश साहब और मन्ना डे साहब के साथ साथ महेंद्र कपूर ने। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर और ये नगमा है फिल्म जिस देश में गंगा बहती है। बेहद खूबसूरत ये नगमा और उतनी ही खूबसूरत ये फिल्म भी थी। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन साहब की बहुत ही खूबसूरत जोड़ी ने और यह फिल्म आई थी 1960 में।

जिस देश में गंगा बहती है, इस फिल्म के इसी नगमे के साथ मुझे यानी फिरोज को अब दीजिए इजाजत। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार फिर मैं आपके साथ रहूंगा ठीक 4:10 पर, लेकर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम अरुणिमा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन की सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय रक्षा बलों का एक दल भारतीय नौसेना के 2 जहाजों के साथ समारोह में भाग लेगा। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मेनी से बातचीत करेंगे और द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। दोनों नेता पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात में देश के पहले सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र के वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि तथा भारत टैक्सी से जुड़े 4,000 से अधिक सारथी भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत

0: सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के दो विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। लंदन में खेले गए FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हरा दिया। पाकिस्तान के अबू बकर ने पहले क्वार्टर में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर अपनी टीम को बढ़त दिलाई। इसके बाद भारतीय टीम ने शानदार वापसी करते हुए लगातार 7 गोल दागे। भारत का अगला मुकाबला रविवार को इंग्लैंड से होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 3-day state visit to Seychelles this morning to attend the country's Golden Jubilee National Day celebrations as the guest of honor. This will be his first visit to Seychelles since 2015. The Ministry of External Affairs said an Indian Armed Forces contingent, along with 2 Indian Navy ships, will participate in the celebrations. During the visit, the PM will hold talks with Seychelles President Dr. Patrick Hermini to review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Union Home Minister Amit Shah will launch the country's first cooperation-based taxi service, Bharat Taxi, in Gujarat today. Senior functionaries from the cooperative sector, representatives of various institutions and more than 4,000 Sarthis associated with Bharat Taxi will participate in the program. Bharat Taxi is a digital mobility platform built on cooperative principles. It will initially be launched in 14 districts of Gujarat, including Ahmedabad, Surat and Vadodara, with plans to expand its services across the state within the next month. Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal has announced the deployment of 1,000 advisory personnel across the country and the upgradation of the trade portal to help businesses maximize the benefits of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA. Addressing the 10th annual UK-India Week in London yesterday, Mr. Goyal said, "The India-UK partnership has expanded beyond traditional trade to encompass strategic sectors such as technology, sovereign AI, critical minerals, defence and clean energy." Department of Atomic Energy Secretary Ajit Kumar Mohanty has inaugurated the world's first hydrogen production facility based on the copper-chlorine thermochemical cycle. The facility uses nuclear process heat from the Fast Breeder Test Reactor at the Indira Gandhi Center for Atomic Research in Kalpakkam, Tamil Nadu. On this occasion, Dr. Mohanty said the integration of nuclear

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर समाचारों के बाद एक बार फिर स्वागत है आप तमाम सुनने वालों का अरुणिमा की इस बेहद खूबसूरत महफिल में। और अरुणिमा की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं, यानी आपका दोस्त फेरोज। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 4:11:25। तो आइए इस बेहद खूबसूरत महफिल का आगाज करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म के नगमे के साथ, और वो नगमा है फिल्म मेरा साया से। आवाज़ है लता मंगेशकर जी की, और इस गीत को लिखा है राजा मेहंदी अली खान ने, और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है मदन मोहन साहब ने। कहते हैं कि जब जिंदगी में आपका कोई अपना साथी हो, जो आपसे कदम से कदम मिलाकर चलता हो, और वो कहीं पीछे भी रह गया हो या आगे निकल गया हो, लेकिन फिर भी उसको आपका एहसास रहता हो, आप उनके दिल में रहते हो, तो फिर समझें वो बिल्कुल आपके साये की तरह है। हर कदम पर आपके लिए अच्छा सोचता है, हर कदम पर आपके लिए अच्छी बातें करता है। ऐसे ही खूबसूरत नगमों के साथ हम हाजिर हैं अरुणिमा के इस दिलकश महफिल में, और फिल्म मेरा साया का ये नगमा कुछ यूं ही बयान करता है।

फिल्म मेरा साया का ये नगमा आवाज़ थी लता जी की। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अरुणिमा के इस बेहद खूबसूरत महफिल में। रात का ये पहर अक्सर हमें खुद से मिलने का मौका देता है। दिन भर की भाग दौड़ थम जाती है और दिल की आवाज़ कुछ ज़्यादा साफ सुनाई देने लगती है। कहते हैं जिंदगी की सबसे बड़ी बातें हमेशा लंबे अल्फाजों में नहीं होती, कभी एक मुस्कुराहट, कभी एक दुआ और कभी सिर्फ दो सच्चे लफ्ज किसी की पूरी दुनिया बदल सकते हैं। इसलिए अगर आपके दिल में किसी सपने के लिए, किसी अपने के लिए मोहब्बत, शुक्रिया या अपनापन है तो उसे कहने में देर मत कीजिए। हो सकता है वही दो लफ्ज किसी के लिए सबसे कीमती तोहफा बन जाए और उसकी जिंदगी बदल जाए। इन्हीं खूबसूरत जज्बात को बेहद दिलनशी अंदाज में पेश करता है अगला ये बहुत ही खूबसूरत नगमा। इस यादगार गीत को अपनी बहुत ही खूबसूरत आवाजों से सजाया है आशा भोसले जी ने और साथ ही साथ अमिताभ बच्चन साहब ने। उनकी आवाजों का ये अनोखा संगम इस गीत को और भी खास बना देता है जब उनकी जबान से निकलते हैं। तो आइए रात की इस महफिल में कुछ पल अपने दिल के नाम करते हैं। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान सजाइए, पुरानी यादों को प्यार से सलाम कीजिए और सुनिए ये सदाबहार नगमा। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, फिल्म द ग्रेट गैम्बलर से। जिंदगी तब और भी खूबसूरत हो जाती है जब हमारे अल्फाज किसी के चेहरे पर मुस्कान और दिल में उम्मीद जगा देते हैं।

दो लफ्ज़ों की है दिल की कहानी। द ग्रेट गैम्बलर फिल्म का ये बेहद खूबसूरत नगमा आशा जी और अमिताभ बच्चन साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर आप तमाम सुनने वालों का मैं फेरोज़ शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपनी पसंदीदा महफिल अरुणिमा में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 4:37:32। रात का ये पुरसकून

खूबसूरत सच ये भी है कि सुकून सिर्फ बीते हुए कल में नहीं बल्कि आज के इस पल में भी हो सकता है। अगर हम कुछ लम्हे अपने लिए निकाल लें, अपनों की कदर करें और हर नए दिन का शुक्र अदा करें, तो जिंदगी फिर से मुस्कुराने लगती है, खिलखिलाने लगती है। इन्हीं नाजुक एहसासात को बेहद खूबसूरती से बयां करता है अगला ये सदाबहार मौसम फिल्म का नगमा, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। इस बेहद खूबसूरत गीत को अपनी दिलकश आवाजों से अमर बनाया है लता मंगेशकर जी और भूपेंद्र सिंह ने। दोनों की आवाजों का ये संगम इस गीत को एक अलग ही रूहानी एहसास दिलाता है जो सीधे दिल में उतर जाता है। तो आइए इस पुरसुकून रात में कुछ पल खुद के नाम करते हैं, यादों की खुशबू, फुर्सत की मिठास और सुरों की नफासत के साथ सुनते हैं ये बेमिसाल नगमा। कहते हैं कि फुर्सत का इंतजार मत कीजिए, अपने हर दिल में कुछ पल सुकून के जरूर रखिए, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत सिर्फ लंबी उम्र नहीं बल्कि हर लम्हे को दिल से जीना है, और यही आपकी जिंदगी को और खूबसूरत बना देगा।

ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। मौसम फिल्म का ये बेहद खूबसूरत नगमा, आवाजें थी लता जी और भूपेंद्र साहब की। रात की यह खामोश फिजा अक्सर हमें सोचने का वक्त देती है। दिन भर की भाग दौड़ के बाद जब सब कुछ ठहर सा जाता है, तब दिल अपने कुछ ख्वाबों, कुछ यादों और कुछ अधूरी ख्वाहिशात से मुलाकात करता है। ऐसे ही लम्हे में एक बात हमेशा याद रखिए, मंजिल चाहे कितनी भी दूर क्यों ना लगे, सफ़र कभी बेकार नहीं जाता। हर कदम अपने कुछ नया सीखने और सिखाने का होता है। हर तजर्बा हमें और मजबूत बनाता है। उम्मीद का दिया अगर दिल में जलता रहे तो दूर का उजाला भी एक दिन अपना हो जाता है। ऐसे ही गहरे एहसासात को बेहद खूबसूरती से समेटे हुए हैं फिल्म आनंद का ये बहुत ही खूबसूरत नगमा, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। इस अमर नगमे को अपनी दर्द भरी और दिल को छू लेने वाली आवाज से अमर बना दिया है मुकेश साहब ने, और इसके बोल लिखे हैं बेहद जज्बाती योगेश ने, जिनकी जिंदगी, जिसकी सादगी, सब कुछ है इसमें। तो आइए रात के इस पुरसकून सफर में कुछ पल ठहरते हैं, अपने ख्यालात को खुली फिजा में उड़ने देते हैं और सुनते हैं ये सदाबहार रूह को छू लेने वाला नगमा। जिंदगी का हर

नया सवेरा हमें एक नया मौका देता है। बीती हुई बातों से सबक लीजिए, लेकिन अपने आज की रोशनी को कभी कम मत होने दीजिए। उम्मीद, सब्र और मुस्कुराहट, यही वो सब हम सफ़र हैं जो हर अंधेरी रात के बाद हमें नई सुबह तक लेकर जाते हैं। तो आइए हम भी चलते हैं इस बेहद खूबसूरत सफ़र पर, कहीं दूर जब दिन ढल जाए।

कहीं दूर जब दिन ढल जाए, मुकेश साहब की आवाज में ये बेहद खूबसूरत नगमा था आनंद फिल्म से। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात का ये खामोश पहर दिल की आवाज सुनने का सबसे खूबसूरत वक्त होता है। दिन की हलचल थम जाती है और जज्बात बड़ी नरमी से हमारे सामने आ बैठते हैं। ऐसे में कुछ नगमे सिर्फ कानों तक नहीं बल्कि रूह तक उतर जाते हैं। जिंदगी हमें ये सिखाती है कि जब नजर में अपनापन और दिल में सच्चाई हो तो हर रिश्ता और भी खूबसूरत बन जाता है। मोहब्बत सिर्फ किसी से मिलने का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे की इज्जत, भरोसे और दुआओं में शामिल रहने का एहसास भी है। ऐसा ही एक नगमा है। इस दिलनशीन नगमे को अपनी मखमली और बहुत ही खूबसूरत आवाज से अमर बनाया है लता जी ने। उनकी गायकी की नफासत और अल्फाज की मिठास इस गीत को एक रूहानी एहसास देती है जो बरसों बाद भी उतना ही ताजा महसूस होता है। तो आइए इस पुरसकून रात में अपने दिल को कुछ पल सुकून दीजिए, यादों की खुशबू को महसूस कीजिए और सुनिए ये बेहद खूबसूरत नगमा फिल्म प्रेम पर्वत से। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और साथ ही साथ आप अपना पैगाम भी हम तक ज़रूर पहुंचाइए। हमारा ईमेल आईडी है fmgold@gmail.com पर।

0: फिल्म प्रेम पर्वत के इसी नगमे के साथ मुझे यानी फिरोज को अब दीजिए इजाज़त अरुणिमा से। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार फिर मैं आपके साथ रहूँगा लेकर अगला प्रोग्राम ठीक 5:10 पर भोर सुहानी। तब तक के लिए नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हार्बिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वो वहां भारतवंशियों से भी मुलाकात करेंगे। भारत और सेशल्स के संबंधों का आधार ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच निकट संपर्क में निहित रहा है। प्रमुख समुद्री सहयोगी देश के रूप में सेशल्स का स्थान क्षेत्रीय सुरक्षा और समग्र विकास के भारत के महासागर दृष्टिकोण में विशिष्ट है। अविकसित देशों के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता में भी वो भागीदार है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में देश के पहले सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र के वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि तथा भारत टैक्सी से जुड़े 4,000 से अधिक सारथी भाग लेंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित एक डिजिटल मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है जो सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता ही नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म के भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे उन्हें आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा तथा स्वामित्व के लाभ प्राप्त होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 के अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी दृष्टि पत्र जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इसकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
2: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को, जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा

0: और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्जी रॉड्रिग्स ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद व्यक्त किया। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी है। भारत का अगला मुकाबला रविवार को इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi will embark on a three-day state visit to Seychelles this morning to attend the country's Golden Jubilee National Day celebrations as the guest of honour. This will be his first visit to Seychelles since 2015. The Ministry of External Affairs said an Indian Armed Forces contingent, along with two Indian Navy ships, will participate in the celebrations. During the visit, the PM will hold talks with Seychelles President Dr. Patrick Hermini to review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Union Home Minister Amit Shah will launch the country's first cooperation-based taxi service, Bharat Taxi, in Gujarat today. Senior functionaries from the cooperative sector, representatives of various institutions and more than 4,000 Sarthis associated with Bharat Taxi will participate in the program. Bharat Taxi is a digital mobility platform built on cooperative principles. It will initially be launched in 14 districts of Gujarat, including Ahmedabad, Surat and Vadodara, with plans to expand its services across the state within the next month. Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal has announced the deployment of 1,000 advisory personnel across the country and the upgradation of the trade portal to help businesses maximize the benefits of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA. Addressing the 10th annual UK-India Week in London yesterday, Mr. Goyal said, "The India-UK partnership has expanded beyond traditional trade to encompass strategic sectors such as technology, sovereign AI, critical minerals, defence and clean energy." Department of Atomic Energy Secretary Ajit Kumar Mohanty has inaugurated the world's first hydrogen production facility based on the copper-chlorine thermochemical cycle. The facility uses nuclear process heat from the fast breeder test reactor at the Indira Gandhi Center for Atomic Research in Kalpakkam, Tamil Nadu. In Kolkata, the death toll in connection with the Taratala building collapse has risen to 16. The injured are being treated at SSKM Hospital. Police have arrested 6 people, including a government official, in connection with the incident. Prime Minister Narendra Modi has congratulated Abelardo de la Espriella on his victory in the Colombian presidential elections. In a social media message, Mr. Modi conveyed his best wishes to Mr. de la Espriella for a successful tenure, saying that he looks forward to working together to further deepen bilateral relations. U.S. Secretary of State Mark

आप सुन रहे दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। वक्त हो चुका है ठीक 5:11 और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी का। और भोर सुहानी की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं, यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। और दोस्तों, हम सब एक नई सुबह में कदम रखने जा रहे हैं, एक नए दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं और एक नए सपने के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे आज की इस नई सुबह में, एक नई उम्मीद के साथ कि हमारा आने वाला दिन अच्छा हो और हर तरफ खुशियां हो, हर तरफ खुशहाली हो। और जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि हम भारतीय मानते हैं कि हम अपने हर दिन ही नहीं बल्कि हर काम की शुरुआत हम उस खुदा का नाम लेकर करते हैं, उस ईश्वर का नाम लेकर करते हैं जिसने इस सृष्टि की रचना की, जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें इस दुनिया में भेजा। हर काम हम उनके नाम से करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं उन्हीं से कि हमारा दिन अच्छा हो, हमारी ज़िंदगी अच्छी हो और हमारी हर सुबह खूबसूरत हो। तो आइए हम भी आज की सुबह का आगाज़ करते हैं ऐसे ही एक बेहद खूबसूरत प्रार्थना के साथ, ऐसे ही एक बेहद खूबसूरत नगमे के साथ। फिल्म द बर्निंग ट्रेन से आवाज़ है सुषमा श्रेष्ठ और पद्मनी कोल्हापुरी की। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर भोर सुहानी की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में

तेरी है जमी, तेरा आसमां, बिल्कुल सब कुछ तुम्हारा दिया हुआ है, सब कुछ तेरा है। हम इंसान बस कठपुतले की तरह है। तो ईश्वर है, तो खुदा है, तो भगवान है, तो सब कुछ है, और इसीलिए हम सब तुम्हारे प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि नई सुबह सुनहरी किरणों के साथ आपका इस्तकबाल करता है। रात की खामोशी अब धीरे धीरे रोशनी में बदल रही है। फिजा में ताजगी, हवा में एक नई उम्मीद है, और हर नया सवेरा हमें ये पैगाम देता है कि हर दिन एक नई शुरुआत का मौका लेकर आता है। जिंदगी भी सुबह की तरह है, चाहे रात कितनी ही लंबी या मुश्किल क्यों न रही हो। सूरज हर रोज बिना शिकायत के फिर उगता है, यही हमें सिखाता है कि बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आज को पूरे यकीन और मुस्कुराहट के साथ अपनाइए। ऐसा ही खूबसूरत नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म हैसियत से। सुकून भरा यह नगमा अपनी मधुर आवाज से सजाया है येशुदास ने, और साथ ही साथ वाणी जयराम ने। दोनों की आवाजों की सादगी और आत्मीयता इस गीत को सुबह की ताजा हवा जैसा एहसास देती है। तो आइए अपनी पहली चाय की चुस्की के साथ दिल में नई उम्मीदों का उजाला भरिए और इस खूबसूरत सुबह का इस्तकबाल कीजिए, क्योंकि हम सब एक नई सुबह में कदम रख चुके हैं, एक नए दिन की शुरुआत कर चुके हैं। भले ही कुछ लोग अभी भी अपने बिस्तर में हैं, बाहर नहीं निकले हैं, जगह नहीं है, लेकिन ये परिंदे चहचहाने लगे हैं, अपने गीत सुनाने लगे हैं और आपको जगाने लगे हैं अपनी इस आवाज़ के साथ।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह नगमा था फिल्म हैसियत से, आवाज थी यशुदास की। दोस्तों कहते हैं कि हर सुबह हमारे लिए एक नया पैगाम लेकर आता है, एक नई उम्मीद लेकर आता है, और हम भी आज की सुबह आपके लिए नई ऊर्जा, नई उम्मीद और नए ढेर सारी मुस्कुराहट लेकर आए, यही उम्मीद करते हैं। सुबह का यह वक्त हमें ठहर कर ये सोचने का मौका देता है कि वक्त कभी रुकता नहीं, लेकिन हर नया दिन हमें खुद को बेहतर बनाने का एक नया मौका ज़रूर देता है। और दोस्तों कहते हैं कि समय सबसे बड़ा बलवान है, वक्त सबसे ज़्यादा ताकतवर है। वो बिना कुछ कहे हमें सब्र, तजर्बा और आगे बढ़ने का हुनर सिखाता है। जो बीत गया वो तजर्बा बन जाता है, और जो आने वाला है वो एक नई उम्मीद बनकर हमारा इंतज़ार करता है। इसलिए हर सुबह का इस्तकबाल एक नई सोच और नए जज्बे के साथ कीजिए। इन्हीं ख्यालों को बेहद खूबसूरती से समेटे हुए हैं अगला ये बहुत ही खूबसूरत नगमा फिल्म जीवनधारा का। समय के दर्पण में समय सचमुच बहुत ही बलवान, बहुत ही शक्तिशाली है। इस दिल को छू लेने वाले नगमे को अपनी बहुत ही खूबसूरत आवाज से सजाया है सुरेश वाडेकर और आशा भोसले जी ने। दोनों की ये गायकी इस गीत को एक गहरी संवेदना और अपनापन देती है। तो आइए इस ताजगी भरी सुबह में कुछ पल खुद के साथ बिताइए, दिल को सुकून दीजिए और सुनिए ये बेहद खूबसूरत नगमा जो आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगा। वक्त बदलता है और उसी वक्त के साथ हालात भी बदलते हैं, इसलिए कभी अच्छे दिनों में घमंड मत कीजिए और मुश्किल दिनों में हिम्मत मत हारिए। हर सुबह ये यकीन लेकर उठिए कि आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा, आपको कल से बेहतर बनाने आया है ये दिन। और इसी के साथ मुस्कुराते हुए अपने इस दिन का आगाज कीजिए।